आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में यानी ठीक 6 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। हम आपके लिए अनुप्रसारित करने जा रहे हैं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, सुनिए ठीक 6 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते

0: हुए। नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की जानकर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। वंदन वार
3: विविध भारती।

आज का सुविचार हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुरा कर उठिए, क्योंकि खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर और शाम को पुनः 6:35 पर माफ कीजिएगा 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान, जिसका भाग 193 प्रसारित होगा। 6:45 पर संगीत सरिता, जिसका पुनः प्रसारण शाम को 6:45 पर आप सुनते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं एसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा, इसका भाग 8 आप सुनेंगे। सुबह 7 आप सुनते हैं पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर आज की फनकार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, प्रोटीन और विटामिन का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुति रामकरण मीणा, प्रसारण का समय सुबह 10। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी। दोपहर 1 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे। दोपहर 3 कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी, अपराध बोध से बचना जरूरी, मुहावरों की दुनिया आंखों का तारा।

होना उद्यमी महिला कल्पना सरोज की बातें होंगी, बातें हल्की फुल्की। परीक्षा परिणाम पर कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे, ये आप सुनेंगे। पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की है। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन, फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना, लेखन ब्रजभूषण का है, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 193।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज सुरों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद।
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, उनके गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन ना गाए हो। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंदिश गाने के बाद में आखिर में भजन जरूर गाते हैं, चाहे वो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हो, चाहे डीवी पलुस्कर जी हो, चाहे पंडित जसराज जी हो, या भीमसेन जोशी जी हो, या किशोरी आमोनकर जी हो, सब भजन गाते हैं। गजल कोई नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में। इसका मतलब गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का अंग नहीं है, लेकिन भजन है, नहीं तो कोई ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गा रहे हैं।

0: भीमसेन जोशी जी, उनके भजन गांव गांव में गाए जाते हैं
1: जी।
0: लोग अपने कार्यक्रम को उनके भजन से ही समापन करना पसंद

एक ऐसे कंपोजर जिन्होंने बड़े सुंदर भजन सबसे गवाए, श्याम तेरी बंसी, रविंद्र जैन जी।

तो ऐसे कोई गायक है ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न छुआ। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाए तो सबका दिल जीत लिया।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहें और अनूप जलोटा जी हमें भजन सुनाते रहें, बस ऐसे ही लग रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही थी। नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया जाए अनूप जी, आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान हो, उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाएं, ऐसी लागी लगन जैसे।
0: क्या बात है।
1: हे राम जैसे, श्याम तेरी बंसी जैसे, तो यंग जनरेशन सुनने लगेगी। लेकिन बहुत मुश्किल गाएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग। तो कोशिश यही की जाए कि सरलता सुगमता सामने आ जाए तो सब उसे प्रेम करेंगे
0: जी। अब अनूप जी, चलते चलते आपकी किसी भजन का मुखड़ा हमें सुनाएं।

0: राम नाम अति मीठा है। अनूप जी, आपके गायकी के माध्यम से हमारे श्रोता अपनी आंखों से देख रहे हैं ये चित्र आपके शब्द चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी आ गई है जब हम समापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: बनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया, आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, मन में नाचे मन की उमंगे। बेकसूर फिल्म से ये गीत है, आवाज लता मंगेशकर की है, एहसान रिजवी के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

बेकसूर फिल्म से अभी लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म से। गीतकार हैं मोती, संगीतकार सी रामचंद्र, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की। सुनिए ये गीत।

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आपने सुना नदिया के पार फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022।

0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल है, तर्ज बनाई है नौशाद अली ने। फिल्म का नाम मेला।

मेला फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आपने सुना। अब सुनिए कमल के फूल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्याम सुंदर का संगीत, और इस गीत को गाया है सुरैया ने।

कमल की फूल फिल्म से सुरैया की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और चितलकर ने। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है श्री रामचंद्र ने।

0: सरगम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में पीएल संतोषी का लिखा गीत था और सी रामचंद्र का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा इस फिल्म से। ये गीत जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतकार हैं नौशाद अली।

ये गीत था उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा फिल्म से। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आग से, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत। इस गीत को लिखा है बहजाद लखनवी ने और संगीतबद्ध किया है राम गांगुली ने।

है 16 बरस की, 16 बरस की भाई उमरिया, 16 बरस की भाई उमरिया। गोरे गोरे पाँव में झांझन, गोरे गोरे पाँव में झांझन, चाल करे बदनाम, होए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल करे।

0: कुकड़ा सब बोले हाय राम, होय होय सब बोले हाय राम,
1: हाय हाय सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम।
0: सबकी लागी तुमके नजरिया, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आग से शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। अब आपको सुनवा रहे हैं बाबुल फिल्म का गीत। इसे गाया है शमशाद बेगम ने, शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीतकार नौशाद अली।

बाबुल फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद अली ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के में। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत, तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

0: तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आपने गीत सुना। अब आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए आपको अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गुलजार का लिखा गीत आर डी बर्मन का संगीत बत किया आंधी फिल्म से।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आंधी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया गीत फिल्म किनारा से गुलजार की बोल, संगीत आजी बर्मन।

किनारा फिल्म से लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में आप ये गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में वक्त है एक अंतराल का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारंट फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल, आरजी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म वारंट से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

हमें राही प्यार के की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में एमजी हशमत का लिखा गीत है। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम उलझन।

उलझन फिल्म से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है।

0: प्रातः के 8 बजे का समय होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
1: Recognizing the ambitious
2: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
1: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
3: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
4: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश

0: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश

0: आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ

0: भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिसकर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: वर्क फ्रॉम होम, हाय सॅलरी, बस एका क्लिक मध्ये. अरे वा, अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका. RBI सांगते,
2: जाणकार बना, सतर्क रहा.
3: इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से. और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से. अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने. शेखर रविजियानी और सलीम मर्चेंट, साथ ही नीति मोहन की आवाजें हैं.

0: सन ऑफ सरदार इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अनजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

0: सन ऑफ सरदार इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अनजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र FM 100.6 MHz पर।
3: श्रोताओं प्रस्तुत है ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष अंतर्गत आकाशवाणी नागपुर की सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती श्रद्धा भारद्वाज, इनसे सारिका पाठक, इनकी बातचीत। ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी से जुड़े सीनियर ब्रॉडकास्टर से साक्षात्कार हम कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम मिलेंगे वरिष्ठ उद्घोषिका और सबकी प्यारी श्रद्धा भारद्वाज इनसे। श्रद्धा मैम, आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत भी है आज के प्रोग्राम में।
4: आपने बुलाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरा स्वागत कर रही हैं मेरे ही परिसर में, मेरे स्टूडियो में, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी भी हो रही है कि 90 साल रेडियो ने अपने पूरे किए। और एक बहुत बड़ा ये अंतराल है, 9 दशक हो जाते हैं। हाँ। और 9 दशकों की बहुत सारी परंपराएं रही होंगी, कई लोग रहे होंगे जिन्होंने इस रेडियो को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। और इन सबके वरिष्ठ जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए होंगे आपसे, तो हम भी सभी सुनने वालों को, सभी ब्रॉडकास्टर्स को, सभी यहाँ काम करने वालों को, चाहे वो फिर ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए लोग हों या एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर इंजीनियरिंग हो, सभी को शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि सभी ने मिलजुल कर एक छोटा सा घर बनाया जिसे 90 साल हो गए।
3: जी, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में।
4: धन्यवाद धन्यवाद।
3: और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला। ऑल इंडिया रेडियो से आपका नाता कैसे जुड़ा ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे।
4: जी, मैं छोटे बच्चों के प्रोग्राम में यहाँ कभी नहीं आई क्योंकि वो मराठी में हुआ करता था, पर जब यानी नाटक की बात आई तो मैं अच्छी नाट्य कलाकार शुरू से ही रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं थी यूनिवर्सिटी के, तब यहाँ पर ऑडिशन हुआ था और ऑडिशन के पहले दिन मेरी पूरी आवाज बैठ गई थी।
3: अच्छा।
4: तो मैंने उनसे कहा और मैंने किसी तरह अपनी आवाज को तैयार किया, पर जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ और मुझे चुन लिया गया। तो फिर उसके बाद कई ऐसे क्या कहते हैं उसे, कदम दर कदम अब मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट रही और ए प्लस के लिए मैंने ऑडिशन भी दिया था। नाटक करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत दिग्गज लोग थे यहाँ पर, कहते हैं मनमोहन भटनागर जी उस समय हुआ करते थे जो नाटक देखा करते थे, किशन शर्मा थे, नारायण ग्वालानी थे, बहुत ऐसे कईयों नाम हैं, अलका नैयर थी और बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ पर आर्टिस्ट आते थे कि जिनके समय मैं छोटी सी, मुझे नाटक करते हुए या फिर एक्टिंग अभिनय करते हुए मुझे थोड़ा शर्म भी आती थी, पर बड़े अच्छे अच्छे रोल मिले और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद में 3-4 डिग्रियां लेने के बाद जब मैंने बीएड की 5वीं डिग्री ली, तो मैंने बीए करने के बाद मैंने MSW किया लेबर वेलफेयर पर्सनल मैनेजमेंट में, उसके बाद बीएड किया और बाद में फिर बाकी की डिग्रियां रही। तो 3री डिग्री के समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विविध भारती मुंबई में अनाउंसर्स के लिए, उद्घोषकों के लिए पोस्ट है। तो जैसा मैं डिबेटर रही हूँ, ऑडिटर रही हूँ और बहुत सारे एनसीसी में, तो थोड़ा एक धाकड़पना आ जाता है।
3: हाँ।
4: तो ऐसा लगा कि चलो मुंबई जाकर हम कुछ कर सकते हैं। तो तब मेरा सिलेक्शन हुआ, हम बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दी, क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि विविध भारती में जो चुनाव होता है उसमें तकरीबन 1,000-1,500 लोग रिटर्न देते हैं जो फॉर्म सिलेक्ट करते हैं उसमें।
3: अच्छा।
4: उसमें से एक 36 लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दी, पर्सनल अपने वॉइस का इंटरव्यू दिया, और उसके आखिरी में केवल 11 लोग थे।

0: जिसमें मैं सिलेक्ट हुई। मेरे साथ रेणु बंसल थी और सुनील वैद्य थे, जो
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: अच्छे
1: है।
0: कमेंटेटर हैं, और रेणु बंसल बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही हैं। तो ऐसा मेरा नाता जुड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। और यहां से वहां जाकर काम करना एक अच्छा अनुभव था।
1: और विविध भारती की फिर कुछ यादें भी आपके पास होंगी, वो हमसे शेयर कीजिए आप।
0: देखिए, विविध भारती के दिग्गज जो लोग थे, जो पहली पीढ़ी थी, वो तो नहीं थी उस समय,
1: हाँ
0: जैसे गंगा प्रसाद माथुर हुए, बहुत सारे लोग थे। अभी ये नाम मेरे एकदम जबान पर आ गया, पुरुषोत्तम दारव्हेकर थे। तो इनकी पीढ़ी, उसके बाद की दूसरी पीढ़ी, और हम लोग ये तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी के हम लोग नुमाइंदे थे।
1: हाँ
0: मैं, रेणु बंसल, बाद में फिर हमारे अमरकांत दुबे हमारे साथ आए, फिर त्रिपाठी जी आए, बहुत सारे लोग आए। तो एक ऐसी एक लंबी फेरिस्त है, पर वहां मैं कहूंगी कि जो जिनसे मैंने सीखा, ऐसे लोग थे कि जो अपने क्षेत्र में, यदि यदि म्यूजिक का पेक्स है तो म्यूजिक में बहुत महारत वाला। छाया गांगुली थी, जो साहित्य के थे, तो मिसेस छाबड़ा थी, मिसेस विजयालक्ष्मी छाबड़ा, जो डीजी बोल के रिटायर्ड हुई, तो वो साहित्य देखती थी, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग आते थे। फोक म्यूजिक, उसी क्षेत्र के फोक म्यूजिक के लोग, मिस्टर चैटर्जी और एक मिस्टर परमार थे, जो फोक म्यूजिक में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया था। और खास तौर पर शब्दों के धनी लोकेन शर्मा वहां पर थे, रजत शर्मा के सबसे बड़े भाई, तो वो लोग वहां पर थे। और मुख्य रूप से वहां पर विविध भारती है, मुंबई है, तो जितने भी साहित्यकार हैं वो टॉक के लिए आते थे। तो मैं आपको जितने भी पेपरों के पत्रकार रहे हैं, या संपादक रहे हैं, या पत्रिकाओं के लोग, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जनसत्ता हो, बहुत सारे पेपर्स, या मराठी पेपर्स भी, वहां के सारे लोग आते थे, तो सबसे मिलना जुलना होता था। संगीत के क्षेत्र में मैंने जाकिर हुसैन से लगाकर, शिव कुमार शर्मा से लगाकर, सभी लोगों को सामने देखा, कईयों को शेखर सेन से लगाकर, मैं भी फेहरिस्त लूंगी तो बहुत बड़ी फेहरिस्त बन जाती
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: एम राजम से लगाकर, तो उनके प्रोग्राम मैंने अनाउंस भी किए, उनसे प्रत्यक्ष मिलने का मौका भी मिला। और फिल्मी दुनिया है वहां पर, तो फिल्मों के कार्यक्रम होते थे, तो मीनाक्षी शेषाद्री, जया भादुरी को भी देखा, फिर माधुरी दीक्षित को देखा, राज बब्बर को देखा, बहुत सारे, यानी एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी लिखने वाले हैं, निदा फाजली को देखा, गुलजार साहब को देखा, आर डी बर्मन को देखा उस समय जब बिल्कुल नए नए लगे थे। फिर उसके अलावा, जब इंटरव्यू के लिए जयमाला, वहां एक कार्यक्रम हुआ करता था, उसके लिए सभी लोग आते थे, तो जयमाला में नीना गुप्ता से लगाकर, रघुवीर यादव से लगाकर, सभी लोग जो फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाए हैं वो लोग आते थे। और कॉन्सर्ट्स होती थी, कॉन्सर्ट में इला, अरुण, भूपेंद्र, यानी मैं आपको अनगिनत नाम ऐसे बता
1: जी
0: सकती हूँ कि इन इन सारे लोगों से मुलाकात हुई, और उन लोगों के साथ कार्यक्रम, यानी कार्यक्रम में हाजिर रहने का भी मौका मिला। मैं हाजिर भी थी, कईयों का अनाउंसमेंट भी किए, कईयों से व्यक्तिगत तौर पर, डिंपल कपाड़िया, अभी मैं एक एक नाम याद आ रहे हैं तो जहन से सारी बातें निकल रही हैं। तो ये शाहरुख खान को भी देखा,
1: वाह
0: तो ऐसे
1: वाह
0: एक के बाद एक सारे लोग आते थे वहां पर, तो किससे व्यक्तिगत मुलाकात। और म्यूजिक डायरेक्टर्स में बहुत अच्छे, खयाम साहब, नौशाद साहब तो नहीं थे उस समय, फिर आशा भोसले, और वहां पर प्रोग्राम कंपेयर का भी बहुत मौका मिला है, तो बाहर में बहुत सारे प्रोग्राम कंपेयर किए हैं, और बहुत सारे गीतकार, संगीतकार, गायक, ये सारे लोग से मुलाकात होती
1: वो
0: रही।
1: अनुभव कैसा रहा आपका?
0: बहुत बहुत बढ़िया कि उनसे, यानी कई बार ऐसा होता है, निदा फाजली साहब आए थे, अब जो ये शब्दों के धनी रहते हैं, ये कुछ ना कुछ कहते हैं, तो हम लोग उठ के जाने लग गए, तो बोले बैठे रहिए, अच्छे चेहरे देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, और दो चार शेर बन जाएंगे।
1: वाह
0: तो इस तरीके के, और मेरे साथ काम करने वाले वसी साहब थे, जो बहुत अच्छे राइटर थे। फिर मुझे अभी जितने लोग याद रहे, कांता गुप्ता थी, जो बिल्कुल एक मदरली फिगर थी, जिनके साथ रहते हुए बहुत एक अरसा बीता, कैलाश सूरी थी, कुसुम सेठ थी, ब्रिजभूषण साहनी थे, जिनको सुन सुन के बड़ा अच्छा लगता था, कि वह साहनी साहब से बातें करके भी बहुत अच्छा लगता था। और वहां का माहौल बड़ा हंसी ठिठोली, बात करते हुए, राइटिंग करते हुए, बहुत ऐसा माहौल था।
1: वाह
0: तो क्या था कि जब आप बैठे हैं अपने सारे अनाउंसर्स के साथ, तभी भी बहुत मजा आती थी, काम करते भी बहुत अच्छा लगता था। तो वहां मैंने बहुत गीतों भरी, और मुझे जाते साथ बहुत अच्छी गीतों भरी कहानियां वहां करने को मिली, तो ताकि मेरे एक्टिंग करियर को बड़ा बूस्टअप मिला। फिर जितने भी लोग आते थे, उन सबके इंटरव्यूज हम लोग करते थे, फिल्म स्टार्स हों चाहे साहित्यकार हों। फिर उसके अलावा बहुत मेन प्रोग्राम्स करने मिले। जो हमारे यहाँ पर पत्रावली वगैरह ये जो प्रोग्राम थे या फिर जो अभी प्रोग्राम आप सुनते हैं बाइस्कोप की बातें, तो ये वरिष्ठ उद्घोषक करते हैं, पर हम लोग छोटे छोटे थे पर फिर भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम और लोगों को बड़े पसंद आते थे। तो वो ऐसा बृहत दायरा है कि जहां पर आप बोलकर सारी ऑल ओवर इंडिया को सुनाते हैं।

0: तो कई प्रोडक्शन हाउसेज आपको बुलाते हैं, आपकी आवाज को सुनकर कई लोग बाहर आवाज के लिए बुलाते हैं, कार्यक्रमों के लिए बुलाते हैं। तो वो बहुत बड़ा दायरा था जिसे देखकर बूढ़े बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि वहां से कभी वापस ना आया जाए, क्योंकि हाँ। वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, एक ग्लैमरस एटमॉस्फेयर है और बहुत कुछ कर दिखाने की क्षमता उसमें थी
1: जी, बिल्कुल।
0: तो हम लोग वो चौथी पांचवी पीढ़ी में वहां पर पहुंचे थे, हाँ। पर छोटे छोटे थे, पर बहुत कुछ किया, अच्छा लगा वहां।
1: वाह वाह वाह श्रद्धा जी, इतनी शानदार शुरुआत हुई आपकी विविध भारती मुंबई से, फिर नागपुर आना कैसे हुआ आपका?
0: फिर हमारे पतिदेव किसी कारण से नागपुर आए, वो कैटरिंग टेक्नोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर विदेशों में रहकर आए थे, तो चाह रहे थे कि अपना खुद का कुछ शुरू करें, तो नागपुर में उन्होंने खुद का अपना व्यवसाय शुरू किया, तो उस कारण मुझे भी आना हुआ। तो जब पहली बार मैं नागपुर आई थी तो यहीं पैदा हुई, यहीं बढ़ी,
1: हाँ।
0: यहीं सब कुछ, यहीं डिबेट्स में भाग लिया, यहीं यूनिवर्सिटी बेस्ट स्टूडेंट मिला, सब कुछ हुआ और कईयों हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। सब कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता था करियर की दृष्टि से नागपुर बहुत छोटा है, और ऐसा शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत सी हुई, क्योंकि मुझे मराठी का पूरा मराठी आती थी पण अस्खलित येत नव्हती,
1: अच्छा,
0: आणि त्यामुळे पण मला थोडासा त्रास झाला, पण मी मराठी शिकले आणि शिकून दाखवलं की बघा मी पण छान मराठी बोलू शकते, आणि मराठी प्रोग्राम भरमसाठ केले असं झालं। आणि नागपूरला आल्यावर यहां पर आने के बाद फिर मैं बहुत सारे प्रोग्राम कंपेयर किए और मैं अपने आप को ना बहुत खुशनसीब समझती हूं कि उसी समय फोन इन प्रोग्राम शुरू हुए, गाने के फोन इन, हेलो मेरी पसंद, नीलावर सारीज, हेलो सुरहरे नगमे, फिर उसी समय ये भी शुरू हुआ हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। तो मुझे हेलो डॉक्टर करते करते 25 साल बीत गए।
1: क्या बात है, आज तक अनगिनत आपने मुलाकातें ली होंगी।
0: हाँ, तो उसमें आप क्या उसकी गिनती नहीं करते,
1: नहीं
0: पर कई हजारों में मुलाकातें ली, और रोज के दो चार, और बहुत सारे हेलो डॉक्टर्स के पूरे आठों दिन पक्के होते थे, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार,
1: हाँ।
0: लोग आते थे और कार्यक्रम करते थे। उसके अलावा बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स करने का मौका मिला, मधुमालती और बेला के फूल तो हम लोग कंपेयर करते थे कि वो करते करते ऐसी आदत सी हो गई थी कि आपको बिठा दिया जाए और आप कार्यक्रम करें, और लोगों को पसंद भी आते थे क्योंकि हर विषय पर, हर शीर्षक पर किसी न किसी तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाते ही रहते थे। बेला के फूल भी कंपेयर करते थे, और अच्छा पढ़ने का शौक रहने के कारण अच्छी उक्तियां, अच्छा लिखना, ये सबसे मेन बात रही। साहित्य मेरा विषय रहा ग्रेजुएशन में, तो हिंदी की उक्तियां, हिंदी के बड़े बड़े शेर, बड़ी बड़ी कविताएं, तो सारी सजा धजा कर लोगों के सामने रखते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारी एक्सप्रेसेस आई, रेड रिबन एक्सप्रेस, बहुत सारे, तो उसी समय जब हम लोग यहाँ पर आए तो वो सारे उनका आंखों देखा हाल, रामनवमी का आंखों देखा हाल, फिर शहर के अलावा हमारे पश्चिम नागपुर का भी आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया गया। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से, जो देवस्थान है, तो वहां से भी बहुत सारी आंखों देखा हाल प्रसारित किया गया। तो लाइव करने का बहुत मौका मिला और अनगिनत मौका मिला। तो हमारे यहाँ क्रिकेट के प्रोग्राम, एक महीने तक क्रिकेट की जितनी आई क्रिकेट कॉमेंट्रीज वगैरह होती थी, तो उसमें भी सहभागिता रही और हम लोग लाइव कनेक्ट होते थे जहां जहां पर मैच चालू होता था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फिर साउथ अफ्रीका हो, तो वहां पर एक्सपर्ट्स से या वहां के खिलाड़ियों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था। उन पर बजट पे प्रोग्राम हुए, वो भी लाइव प्रोग्राम किए। उसके अलावा डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिग्निटरीज का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग नागपुर होता था और वो मैंने किया, बहुत सालों तक किया, तो वो करते समय बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आती थी, बाबा साहेब पुरंदरे से लगाकर तो नागपुर की अच्छी अच्छी हस्तियां, फिल्मी हस्तियां, तो वो आती थी, तो उनसे बात करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत प्रसन्नता भी मिली। और इतने सारे लाइव और रिकॉर्डेड भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, और कई शीर्षकों के अंतर्गत हमारे यहाँ कार्यक्रम होते थे कि जिसमें आप बहुत सुंदर म्यूजिक की फील्ड में कुछ कर सको। कॉन्सर्ट्स हुई हैं,
1: हाँ।
0: तो कॉन्सर्ट्स में भी कईयों बार यानी कंपेयर करने का मौका मिला। तो ये ऐसा रहा कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि काम बहुत था और उस काम में अपनी प्रतिभा को और भी निखारने का मौका मुझे मिला है। और ये जो आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स, उस समय बड़ा ये था कि हमारे स्टेशन डायरेक्टर बेसेकर साहब थे, उनका बड़ा कहना था कि नहीं आप एंट्री भेजो, एंट्री भेजो, एंट्री तो कईयों बार, चार पांच बार एंट्रीज मैंने लिखी भी हैं और बोली भी हैं, यानी उसका कंपेयर भी किया है और उसको प्राइजेस भी मिले, 3 आकाशवाणी एनुअल अवार्ड मिले हैं। भगवान ने मुझे मेरी प्रतिभा के अनुसार काम दिया। लोग करियर चुनने में सोचते हैं ना, मुझे ईश्वर ने वो प्रदत्त कर दिया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे स्टूडियो में जाकर जब मैं खुद अपने साथ होती हूँ 8 घंटे, तो वो अपने आप में एक स्वर्णिम सुख है कि आप स्टूडियो, मुझे स्टूडियो की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं छुट्टी जब जाती हूँ और वहां से वापस आई तो मुझे स्टूडियो में आने पर

0: बड़ा अच्छा लगता है और बेहद प्रसन्नता होती है। तो ऐसे वातावरण में काम करके कि जहां मैं खुद के साथ हूं, खुद का मनन, खुद का चिंतन, खुद की प्रतिभा, खुद का लेखन, खुद का लोगों का पढ़ना, मैंने बहुत पढ़ा है स्टूडियो में बैठकर कि जब समय नहीं है तो अच्छा पढ़ें, अच्छा। और जितना ज्यादा, मैं सभी ब्रॉडकास्टर से ये बोलूंगी कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, आंखें कान जितना खुली रखोगे, हर चीज को जितना गुनोगे, समझोगे और उसे कनेक्ट होते होते आपको बोलते समय आप इतना बोल सकते हैं कि आपको कोई 10 घंटा भी बिठा दे तो बोलना कम पड़ जाता है।
1: क्या बात है। और हम सब भी सुनने वाले खुशनसीब है कि इतने सालों से आपकी इतनी मधुर और इतना अभ्यास पूर्ण हम सुन रहे हैं आवाज।
0: जी जी,
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और जब उस समय के आपके कार्यकाल के समय को आप याद करती है तो कैसा महसूस करती है?
0: कार्यकाल तो सभी जगह का बहुत अच्छा रहा, पर विविध भारती को भूलना थोड़ा कठिन है क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा समय भी था और जहां इंसान की शुरुआत होती है उससे विशेष लगाव होता है। पर नागपुर में कार्य करते हुए भी मुझे बेहद खुशी हुई। बहुत अच्छे अनाउंसर्स उस समय थे, बहुत अच्छे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स भी रहे हैं जिन्होंने बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया। और मुझे काम करते समय किसी ने रोका नहीं, टुका नहीं, मैं अपने आप में एक अलग मिल्कियत रखती थी, मुझे अच्छा लगता था और मैं उसी तरह करने की पूरी कोशिश करती थी। तो मेरे साथ के अनाउंसर्स राधिका पात्रीकर थी, सैमसन मानवटकर थे, नंद किशोर तारे थे, मिस्टर भुसारी थे, फिर प्रभा देउस्कर, वैशाली बोधनकर, लता कुलकर्णी, एक अंबादास डोक थे, तो बहुत सारे, यानी मैंने सारे, एक नागोत्रा मैडम थी, तो बहुत सारे लोगों के नाम लिए, जयंत पात्रीकर थे, तो हिंदी में मैं थोड़ा अच्छा ये करती थी, मराठी में भी, तो हिंदी मराठी दोनों कार्यक्रम मैंने बहुत अच्छे किए हैं जो यहाँ प्रिजर्व भी किए गए, लोगों ने पसंद भी किए और लोगों ने बहुत चाहा, अच्छा प्रतिसाद मिला।
1: श्रद्धा जी, ये तो आप बहुत अच्छी बातें बता रही है और ऐसा लगता है आप बोलती जाए और हम सुनते ही जाए। आपका इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कार्यकाल रहा है, तो कोई यादगार लम्हा जो अभी भी याद है आपको वो हमारे
0: जी,
1: साथ शेयर कीजिए।
0: नहीं, विविध भारती में काम करते हुए तो सभी, यानी जितने भी आर्टिस्ट थे उन सबसे मिलने का मौका मिला। मुझे सबसे पहला दिन याद है कि मैं जैसे ही मैंने एंट्री की तो बोले ये छोटी लड़की आ गई, बिल्कुल बहुत कम उम्र थी, 23 साल की, ये छोटी बच्ची आ गई। इससे छोटे बच्चे का, गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी जयंती थी तो उसका एक नाटक करवाया गया, मैंने बहुत प्यार से उसे किया। और मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स रहे हैं और जितने भी साथ वाले, वो मेरे बड़ा इंतजार करते थे कि मैं, हमारी हीरोइन आ गई, ऐसा बोलते थे क्योंकि वो हीरोइन के किरदार निभाने का बहुत मौका मिला, चाहे फिर वो गीतों भरी कहानी हो और बहुत सारे कार्यक्रम हो। और वहां रहते हुए जैसे अनुभव की बात आप कहेंगी तो ये तो मेरी यादगार लम्हे मैंने आपको बताए, अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं कि ये ऑल इंडिया रेडियो ऐसी एक जगह है कि जहां वो आपको समा लेती है कि आपकी कोई भी दिक्कतें हो। मेरे दोनों बच्चे हुए तो उन दोनों को मैं कभी ले भी आती थी ऑफिस, तो बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत अच्छा एक वातावरण मिलता था। कई लोगों से मिलने का मौका मिला तो लोग बड़े प्यार से मिलते थे और प्यार से बातें भी करते थे। और उस समय थोड़ी मॉडर्निटी आ रही थी कि सभी लोग अपना अपना, जैसे बहन जी और भाई साहब ऐसा पहले बोलते थे, तो हम लोग बड़े नाम से बहुत अच्छे प्रोग्राम करते थे। तो ये ऐसा भी बहुत मौका मिला है वहां पर। ड्रीम कम ट्रू, आप जिनको देखना चाहते हैं वो यदि आपके सामने आए तो उनको देखकर अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं। और अनुभव मैं ये बताती हूँ कि वहां पर आप कभी भी लिखते हैं तो जैसे लोकेंद्र शर्मा थे, उनको यदि कभी स्क्रिप्ट, हम बिना स्क्रिप्ट जचाए कुछ नहीं करते थे, आपकी स्क्रिप्ट पूरी साइंड होनी चाहिए। तो जब स्क्रिप्ट दिखाते थे तो अरे वाह बहुत अच्छा लिखा है, इस शब्द को इधर कर दो, इस शब्द को इधर कर दो, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा तुमको, और स्क्रिप्ट बहुत सुंदर बनती थी। कई बार आपका प्रोग्राम अच्छा हो जाए तो आपको लिसनर्स के फोन आते थे, स्टेशन डायरेक्टर आपको बोलते थे। मेरी पहली स्टेशन डायरेक्टर उर्वशी जोशी रही, फिर उसके बाद में विजयलक्ष्मी छाबड़ा रही, तो उनके साथ रैपो इतना अच्छा था कि बात करते करते बहुत सारे विषय सूझते थे वहां पर, लोगों की शादियों में, इसमें उसमें, तो एक परिवार का माहौल वहां पर बहुत अच्छा था। और खासकर अनुभव की मैं बात करूं तो हर एक व्यक्ति ने कुछ न कुछ सिखाया है, पर जब मैं खुद अपना छायागीत करती थी, खुद लिखती थी, खुद बोलती थी और खुद अपने स्क्रिप्ट्स ये करती थी तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपना बहुत अच्छी तरह लोगों के समक्ष अपने आप को प्रदर्शित कर सकती हूँ।
1: श्रद्धा जी, आज आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आई है और ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इतनी अच्छी अच्छी बातें और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर किया, हम बहुत बहुत आभारी है आपके।
0: जी, बस जाते जाते ये कहूंगी

0: कि आप प्रोग्राम करते हैं, करते समय आप जब बोलते हैं तो आप उसको पढ़िए मत, उसको बहुत प्यार से बोलते समय कि जैसे मैं मेरे प्यार से, लोग कहते थे ना कि आप तो हमारे घर की हैं, आप रोज सवेरे हमारे घर आ जाती हैं, तो उनसे बात करते समय उनसे आप बतियाइए, बोलते समय बहुत प्यार से सादी भाषा में बहुत अच्छी तरह यदि आप बात करेंगी तो हर लिसनर को लगेगा कि वो आपसे मुखातिब है, आपसे बात कर रही है। धन्यवाद, नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष अंतर्गत आकाशवाणी नागपुर की सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती श्रद्धा भारद्वाज, इनसे सारिका पाठक, इनकी बातचीत।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र FM 100.6 MHz पर। 9:30 हो रहे हैं, लीजिए सुनिए हमारा अगला प्रोग्राम आज के फनकार हमारे मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में

एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जाने। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं।

हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी।

0: आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी प्रसारित करीत आहोत लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर। श्रोतेहो नमस्कार। क्रिटिक केअर हॉस्पिटल आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूट सीताबर्डी नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपण बातचीत करणार आहोत गोल्डन आवर फर्स्ट 60 मिनिट्स अर्थातच सुवर्णकाळ पहिली 60 मिनिटे याबद्दल। आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर दीपक जेस्वानी। आपल्या शंका आपले प्रश्न आपण डॉक्टर दीपक जेस्वानी यांना विचारू शकता आणि आमच्या या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता। त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067 256 0101 आणि 2529266। आपण जर नागपूरच्या बाहेरून कॉल करणार असाल किंवा आपल्या मोबाईलवरनं कॉल करणार असाल तर या फोन नंबर्सच्या आधी 0712 हा एसटीडी कोड नक्की डायल करा। श्रोताओं आप सुन रहे हैं क्रिटी केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीताबर्डी नागपुर हेलो डॉक्टर ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने जा रहे हैं गोल्डन आवर फर्स्ट 60 मिनट्स अर्थात सुवर्णकाल पहले 60 मिनट इसके बारे में। हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर दीपक जेस्वानी। आप अपने सवाल अपनी शंकाएं डॉक्टर दीपक जेस्वानी से पूछ सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में सहभाग ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266। अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इन फ़ोन नंबर से पहले 0712 ये नागपुर का एसटीडी कोड जरूर डायल करें। डॉक्टर दीपक जेस्वानी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव फॉर इन प्रोग्राम में। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं गोल्डन आवर के बारे में। पहले जो 60 मिनट हम एक शाहरुख खान जी का एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया था कि 70 मिनट आपके पास है तो इसी तरह से क्या इसी धरती पे ये 60 मिनट जो हमारे हाथ में होते हैं किस बारे में है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं?
1: मेडिकल साइंस में समय बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे बोलते हैं समय बड़ा बलवान, वैसे ही हमारे फील्ड में अगर पहले 60 मिनट जहां से पेशेंट का कोई हादसा या बीमारी शुरू के लक्षण दिखते हैं जो गंभीर रूप के लक्षण है, ऐसे समय में अगर वो पहला घंटे का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर हेल्प दी जाए और फर्स्ट एड अगर पॉसिबल है तो दी जाए, ऐसे में अगर पेशेंट सही समय पर अस्पताल पहुंचता है तो उसके ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। वो पेशेंट आईसीयू में नहीं जाता या अगर जाता भी है तो उसके तो जल्दी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और घर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर इस एक घंटे का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया। इसीलिए इसे गोल्डन आवर बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना है और रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है।
0: जी, तो ये जो हादसे के बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्या एक्सीडेंट हो सकता है, क्या ये हार्ट अटैक हो सकता है, किन किन चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि ये जो पहले 60 मिनट है पहला जो एक घंटा है वो बहुत ज़रूरी है?
1: कहते हैं टाइम इज मसल। जैसे पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और अगर ये बड़ा एक्सीडेंट है तो उसे जल्दी अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है। वैसे ही हार्ट अटैक, आपको मालूम है कि हार्ट अटैक के मरीज अगर जल्दी पहुंचेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनकी बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसी तरह ब्रेन अटैक, पैरालिसिस अटैक या सेप्टिसिमिया, गंभीर इन्फेक्शन, या किसी शख्स ने पॉइजन खा लिया तो वो पॉइजन का असर अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। तो ये सारी जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई इसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समय गवाए अगर मरीज पहुंचता है तो उसमें ठीक होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है।
0: जी बिल्कुल, ये तो हमने जान लिया कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है, लेकिन अगर देरी हो जाती है तो क्या कठिनाइयां होती है ये एक बार हम अपने श्रोताओं को बता दें।
1: देरी हो जाती है तो ये बीमारी बढ़ेगी और हो सकता है कि पेशेंट घर पे ही जान से हाथ गंवा बैठे या हार्ट बंद हो जाए, या अगर पेशेंट पैरालिसिस का पेशेंट है तो हर पल हर सेकेंड ब्रेन के सेल्स कोशिकाएं

0: लाखों नंबर में उनकी खराबी होती है, डैमेज होता है, तो उसमें रिकवरी जैसे पेशेंट क्या बात कर पाएगा, क्या बोल पाएगा, क्या चल पाएगा, ये सारा निर्भर करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचा और उसे कितनी जल्दी प्राथमिक उपचार मिला। तो ऐसे कंडीशन में डैमेज बढ़ता है और रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसी तरह अगर पेशेंट कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है तो उसका अत्यधिक ज़्यादा खून बह जाएगा, और सेकेंडरी इंसल्ट जैसे ब्रेन को चोट लगी एक्सीडेंट से, वो तो प्राइमरी इंसल्ट हो गया, लेकिन खून बहने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से सेकेंडरी डैमेजेस होते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इनसे बचाया जा सकता है। उस तरह पॉइजन के पेशेंट्स में अगर हम जल्दी से पॉइजन निकाल लेते हैं या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीडोट देते हैं तो उसमें जल्दी ये आता है। तो अगर हम लोग पॉइजन के पेशेंट को जल्दी नहीं पहुंचाएंगे तो फुल ब्लोन लक्षण पॉइजनिंग के नजर आएंगे, उस समय पेशेंट को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा या हो सकता है ज्यादा समय लगे या ज्यादा समय आईसीयू में रखना पड़े।
1: बिल्कुल। हम एक एक कंडीशन के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले अगर एक्सीडेंट के बारे में बात करें, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, रास्ते पे हो सकता है, घर में हो सकता है, और कई अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसमें जैसे अगर किसी की हड्डी टूट रही है, टूटी हुई हमें दिखती है, तो किस तरह से हमें पेशेंट को हैंडल करना चाहिए?
0: बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। एक्सीडेंट में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है तो सबसे पहले कि एक या दो वॉलंटियर्स सामने आए और एक वॉलंटियर दूसरे को बोले कि आप जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। और एम्बुलेंस जो है वो करीबी अस्पताल से बुलाना जरूरी है, बहुत दूर के अस्पताल। मेरा घर अगर अंबाजरी में है तो मैं शांतिनगर से एम्बुलेंस नहीं बुलाऊंगा, मैं नियरेस्ट धर्मपेट से एम्बुलेंस बुलाऊंगा। तो जो करीबी अस्पताल है वहां पे, क्योंकि पहुंचने में समय कम लगेगा और जल्दी अपने को मेडिकल हेल्प मिल पाएगी। सेकेंड, अगर एक्सीडेंट है तो हड्डी टूटने का डर नहीं है, हड्डी टूटने के बाद भी पेशेंट मरता नहीं है, उस हड्डी को जोड़ने की कोशिश, हिलाने की कोशिश ना करें, उससे खून ज्यादा बहेगा। आपको ये देखना है कि पेशेंट होश में है क्या, और उसकी जो गर्दन है उसको स्थिर रखा जाए, उसको मोड़ा ना जाए, और पेशेंट को स्थिर जमीन पे लिटा दिया जाए, उसको बिना हिला डुले रखा जाए। अगर पेशेंट होश में है तो उसको पानी दे सकते हैं, अगर पेशेंट होश में नहीं है, सुस्त है, तो बिल्कुल पानी मत दीजिए। एम्बुलेंस को बुला के उसको सीधा उठा के एम्बुलेंस में रखना है, उसकी गर्दन को मोड़ना नहीं है, क्योंकि इस सब चीजों से क्या होगा, सेकेंडरी डैमेज होगा गर्दन में, चोट या फ्रैक्चर से उसके जो मज्जा तंतु है मनके के, स्पाइनल कॉर्ड के, वो और खराब होंगे, उससे और डैमेज होगा। इसी तरह पेशेंट सुस्त है तो उसको पानी न मिलाएं और उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं, करीब अस्पताल।
1: बिल्कुल। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीताबर्डी नागपुर, हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। और आज इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं गोल्डन आवर के बारे में, मतलब कोई भी अगर हादसा हो जाता है तो के बाद के जो पहले 60 मिनट होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी। आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर दीपक जेसवानी से पूछिए और हमारे इस प्रोग्राम में सहभाग लीजिए। हमारे फोन नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266, नागपुर का एसटीडी कोड 0712 अगर आप नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं। तो डॉक्टर जेसवानी, अच्छा एक फोन ले लेते हैं पहले। हेलो
2: जी। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
0: नमस्कार।
2: ये पूछना था कि ब्रेन स्ट्रोक दोनों, हेमरेज और एस्टिमिंग दोनों हुआ है और तभी जरा मेडिकल फैसिलिटी इमीडिएटली नहीं लिए तो क्या प्रॉब्लम होगा?
0: जी, स्ट्रोक
2: फैसिलिटी तो अभी तक आई नहीं है, थोड़ा स्पीच में थोड़ा सा ब्लरनेस आया है।
0: जी, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट जो होते हैं इनको आप सबसे पहले तो शांत रहें, पैनिक न करें, इनको एक नीचे लिटा दीजिए एक स्ट्रेट बिस्तर पे और एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है। ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो दो कारणों से होता है, या तो खून की नस बंद हो गई है क्लॉट की वजह से, या खून की नस फट गई है, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो इसमें जैसे हार्ट अटैक के मरीजों हम लोग एस्पिरिन गोली देते हैं, ब्रेन अटैक के पेशेंट्स में ये नहीं दे सकते, क्योंकि 20% पेशेंट्स में ब्रेन हेमरेज से भी लकवा स्ट्रोक होता है। ऐसे कंडीशन में वो खराब हो सकता है अगर आप एस्पिरिन देंगे तो। और पेशेंट को अगर स्लरिंग ऑफ स्पीच है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप रिकवर हो जाता है, लेकिन हमको उसके लिए वेट नहीं करना है, हमको जल्दी से एम्बुलेंस बुलानी है। कोशिश कीजिए कि ऐसे पेशेंट्स को जल्दी धर पकड़ करके अपने गाड़ी में बिठा के ना ले जाएं, क्योंकि जितनी देर आप पेशेंट को खड़ा रखेंगे या बैठा रखेंगे उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम रहेगा। तो लिटा के रखें और लिटाते हुए ही एक स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में ही अस्पताल में शिफ्ट करें, जल्दबाजी ना करें। गलती से भी पेशेंट को पानी या कोई

0: और चीज ना पिलाएं, कोई चाय ना पिलाएं। कोई कोई लोग, गांव के लोग केरोसिन पिला देते हैं पैरालिटिक अटैक में, ताकि उनकी मानता है कि केरोसिन पिलाने से लकवा जल्दी ठीक हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा केरोसिन जो है वो एक पॉइजन है, वो लंग्स को डैमेज करेगा, केमिकल निमोनिया करेगा और लंग्स को भी डैमेज करेगा। उसको हम लोग केमिकल निमोनिया बोलते हैं, ये ल्यूपॉइड निमोनिया बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। तो ब्रेन पैरालिसिस एक जगह रह गया, बाकी कॉम्प्लिकेशंस निमोनिया के या हो जाएंगे। इसलिए आप शांत रहें, एम्बुलेंस कॉल करें और एम्बुलेंस का वेट करें। ब्रेन पैरालिसिस में कोई भी प्रारंभिक टैबलेट वगैरह नहीं देनी है और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है, करीबी अस्पताल।
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: हम आजकल कई बार सोशल मीडिया पे कई विजुअल्स देखते हैं कि ऑफिस में काम करते हुए या फिर किसी दुकान में बैठे बैठे कोई व्यक्ति जो है वो गिर पड़ता है और उसके बाद उठ नहीं पाता है, तो ये किस तरह के लक्षण हैं और क्यों ऐसा होता है कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी समय नहीं बचता?
0: ये जो आपने सिचुएशन बताई

0: दुकान में बैठे बैठे कोई व्यक्ति जो है वो गिर पड़ता है और उसके बाद उठ नहीं पाता है, तो ये किस तरह के लक्षण हैं और क्यों ऐसा होता है कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी समय नहीं बचता?
1: ये जो आपने सिचुएशन बताई, ये वंस इन लाइफ टाइम आपके या मेरे जिंदगी में कभी ना कभी एक बार देखने को मिलेगी, बट एक हाथ बारी देखने को मिलती है। अगर आप सक्षम हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के, तो ये जो पेशेंट आपके सामने सडनली कोलैप्स हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको आप कार्डियोपल्मरी सेटरेशन CPR दे सकते हैं। सभी लोगों को, चाहे वो डॉक्टर हो, नॉन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी आम आदमी हो, उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट आना ही चाहिए, वो सीखिए। YouTube पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। आपके सिंपल बेसिक लाइफ सपोर्ट से पेशेंट के बचने की उम्मीद 2 या 3 times बढ़ जाती है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो पक्का वो मरने वाला है वहीं पर, अगर आप करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि ये पेशेंट बचेगा, इसकी हार्ट बीट्स वापस चालू करेंगी। आपको करना कुछ नहीं, अपने दोनों हाथों से छाती के बीचों बीच रख के उसको दबाना है, कम से कम 100 times 1 minute में दबाना है, और उसको तुरंत एक एक किसी को बोलिए कि आप एम्बुलेंस बुलाइए और आप CPR शुरू कीजिए। CPR को बिल्कुल बंद मत कीजिए, इसको बोलते हैं कंप्रेशन ओनली CPR, जिसमें अपन छाती को दबाते रहते हैं, इससे हार्ट बीट्स चालू होती है, इससे ब्लड सप्लाई मिलता है और मस्तिष्क भी जीवंत रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को CPR करते वक्त अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट से इस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जब एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस में ऐसी क्या क्या चीजें होती है जो पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होती है?
1: सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस का नंबर दिया 108, वो याद रखिए, मोबाइल में रखिए, उसी को कॉल करना है। कोई प्राइवेट एम्बुलेंस या उसके चक्कर में मत जाइए, 108 ज्यादा नंबर में अवेलेबल है, सबसे पहले 108 बुलाइए, वो 108 एम्बुलेंस आपको सबसे करीबी अस्पताल में पहुंचा देंगे। उस 108 एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, डॉक्टर रहता है, वेंटिलेटर रहता है, डिफिब्रिलेटर जो शॉक देते हैं वो रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस रहती हैं, और वो डॉक्टर जो है अंदर है वो पूरी तरह ट्रेंड है ऐसी इमरजेंसीज को डील करने के लिए। जैसे अगर वेंटिलेटर लगता है या CPR लगता है, तो रास्ते में वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते सारी इमरजेंसी जो चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें, वो कर लेगा। इसीलिए डॉक्टर वाली एम्बुलेंस जो 108 एम्बुलेंस, उसी को बुलाएं, वो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जरूर पहुंचा देगा और बहुत हाई चांसेस है कि इसमें से पेशेंट बच जाएगा।
0: जी बिल्कुल, और अगर किसी कारण एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है या देर हो रही है ऐसा लगता है, और हमें ऐसे सिचुएशन आती है कि अपनी गाड़ी से लेकर जाना है पेशेंट को, तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखने चाहिए?
1: ध्यान में ये रखना है कि पेशेंट को स्थिर स्ट्रेट लेटाएं, उसको बिठाएं या खड़ा ना करें, ताकि ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता चलता रहे। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, तो तुरंत CPR करते करते ही शिफ्ट करें। अपनी गाड़ी में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जगह उतनी नहीं होती, लेकिन अगर नहीं मिल रही एम्बुलेंस तो वैसा ही कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो करीब में डॉक्टर क्लिनिक पे बैठते हैं उनके पास ले जाएं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उस डॉक्टर के पास कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे अस्पताल में जहाँ पे इमरजेंसी रूम, कैजुअल्टी, ICU अवेलेबल है, ऐसे ही अस्पताल में ले जाएं। तो इसमें से जरूरी उल्लेखनीय बात यह है कि हम सब लोगों को ये मालूम रहना चाहिए अभी भी कि कहाँ जाना है, कौन से नंबर पे डायल करना है, कौन सा हॉस्पिटल नियरेस्ट है जहाँ ICU कैजुअल्टी इमरजेंसी सर्विसेज 24 hours अवेलेबल है। ये कोई सोच के रखता नहीं है, लेकिन आपको सोच के अपने मोबाइल में लिख के रखना है ये सब चीजें।
0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं क्रिटी केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीताबर्डी नागपुर, हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम, और आज हम बातचीत कर रहे हैं हादसे के बाद के पहले 60 minutes क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसका महत्व है। आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर दीपक जेसवानी से पूछिए और हमारे इस प्रोग्राम में सहभाग लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266 0712, ये एसटीडी कोड आप जरूर डायल कीजिए अगर आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो डॉक्टर दीपक जेसवानी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये एक्सीडेंट वाला सिचुएशन है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं आएगा, तो ऐसे में घबराहट जो आजू बाजू में लोग हैं उनमें घबराहट हो सकती है और इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो क्या क्या चीजें सब

0: सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए ये जरूर हम सुनना चाहेंगे, लेकिन एक फोन ले लेते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बरौन नागपुर से लश्करी बाग से।
2: नमस्कार
1: सर, मेरा ने एक बहुत ही अलग सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आप भी पढ़ते होंगे कि जो क्राइम अगेंस्ट विमेन जो होते हैं, जिसमें लड़कियों पे या लेडीज के ऊपर एसिड अटैक होने, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मतलब किस तरह से मतलब इंसान को मतलब रिलीफ दिया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि पानी नहीं डालना चाहिए, मतलब डॉक्टर्स का कहना से, और मतलब स्किन बर्न होती है बबल्स उससे, तो दूध डालने के लिए मतलब कहते हैं, मतलब आपका सर क्या एडवाइस करेंगे लोगों को, मतलब अवेयरनेस इस बारे में कैसे?
2: मेरे को मुझे लगता है कि एसिड अटैक से बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसे में पानी नहीं डालना ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा उसको आप पानी से के छिड़काव से वो एसिड साफ कर सकते हैं। उसको आप कपड़े से साफ मत कीजिए, पानी स्प्रे कीजिए ताकि वो एसिड जल्दी निकल जाए, उसको घसना नहीं है। और इन पेशेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती है, एक तो आँख और दूसरा मुंह में, अगर एसिड गया तो मुंह में छाले। तो पेशेंट अगर होश में है तो उसको गार्गल्स करने बोलिए ताकि मुंह में जितना एसिड है वो निकल जाए, और आंखों पे ठंडा पानी डालना जरूरी है ताकि वो एसिड डाइल्यूट होकर बाहर निकल जाए। तो पानी मारना जरूरी है, और जल्द से जल्द इस पेशेंट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास या जहां पे सभी सुविधा अवेलेबल है वहां ले जाना बहुत आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल। एक और श्रोता है फोन पे। हेलो, हेलो,
3: हां नमस्कार।
2: नमस्कार
3: डॉक्टर सर, सुरेंद्र बोल रहा हूँ नागपुर से।
2: जी
3: सर, लेफ्ट साइड जो ये जो ओट होता है नीचे का,
2: जी
3: उसके नीचे झुनझुनाहट हो रही है, करीब एक हफ्ता हो रहा है सर।
2: जी
3: तो यही पास के क्लिनिक में दिखाया था, उन्होंने बोले B12 की कैप्सूल ले लो।
2: जी जी
3: ठीक है सर, तो लिया मैं
2: जी
3: अभी।
2: जी
3: लेकिन मैं आपसे जानना चाहता था सर कि मुझे और क्या प्रिकॉशन लेना है या कौन से टेस्ट वगैरह कुछ करना है?
2: बिल्कुल आपने सही बोला, ये जो झुनझुनाहट है ये कभी कभी रेयरली स्ट्रोक के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। जैसे अटैक, हार्ट अटैक आने के पहले कभी कभी छाती में दर्द होता है, भारीपन लगता है थोड़ी देर के लिए, वैसे ही ब्रेन अटैक आने के पहले झुनझुनाहट आना या नमनेस, सुन्नपन लगना, ये किसी भी भाग में हो सकता है, इसको नजरअंदाज ना करें। अगर ये बार बार होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाएं। अगर न्यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है या जरूरी है तो वो आगे जांच करेगा, सीटी स्कैन करेगा। अदरवाइज कॉमनली हम लोग हर लक्षण को इग्नोर करते हैं और ये कंट्रोवर्सी या डिबेट क्रिएट करते हैं कि ये साधारण सुनपन है या स्ट्रोक है। इसको डिबेट किए बिना आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के ओपिनियन लीजिए, वो जो डिसाइड करेगा आपके हित में रहेगा उसके हिसाब से आगे चलिए।
0: जी बिल्कुल। हम बातचीत कर रहे थे कि जनरल पब्लिक ने क्या ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जिससे जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए और हम जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए।
2: सबसे पहले कि अपने आप को इस सिचुएशन के बारे में तैयार रखिए, पैनिक मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मुक्त रहिए, और आपको ये इमरजेंसी हैंडल करनी है इसीलिए शांत रहिए। और एक कोई भी जो आसपास आदमी है उसको ये बोलिए कि आप जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए करीबी अस्पताल से। सबसे पहले आता है इसमें शांत रहना और कॉल फॉर हेल्प। हम लोग बेसिक लाइफ से पढ़ाते हैं तो उसमें यही बोलते हैं कि आप अपना इमरजेंसी कार्य शुरू कीजिए, लेकिन कॉल फॉर हेल्प पहले हेल्प बुलाइए। और दूसरा, अगर पेशेंट को अटैक है, हार्ट अटैक लग रहा है आपको, छाती में दर्द वगैरह है, पसीना आ रहा है, तो उसको डिस्प्रिन गोली दीजिए। अगर पेशेंट को पैरालिटिक अटैक है तो उसको कोई भी पानी वगैरह कोई दवाई मत लीजिए, उसको लेटा दीजिए, उसको अच्छा ठंडी जगह पे लिटाइए जहां अच्छा वेंटिलेशन है, एयर कंडीशन चालू कर दीजिए और जमीन पे लिटा दीजिए। और बिना पैनिक हुए उसके जो क्लिनिकल लक्षण है, जैसे होश है या हाथ पर हिलाना है, बातचीत करते रहिए उससे, लंबी सांस लेने बोलिए, और वहां भीड़ नहीं करनी है, गर्दी नहीं करनी है, उसको सफोकेट नहीं करना है, थोड़ा अच्छा वेल वेंटिलेटेड जगह में उसको रखना है जब तक कि हेल्प नहीं आ जाती। हेल्प बुलाने के लिए आपको किसी न किसी को बोलना पड़ेगा और वो 108 से हेल्प बुलाएगा, और जैसे ही डॉक्टर आ जाते हैं वो अपने आप पूरा असेसमेंट करके ट्रीटमेंट चालू कर देंगे।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है फोन पे। हेलो, हेलो,
4: हेलो,
0: नमस्कार।
4: नमस्कार,
0: बोलिए।
4: हाँ बोला डॉक्टर, वाला प्रश्न है।
0: हाँ बेचारा,
4: मैं हेमराज जोके बोलतो, जेडी पटना नागपूर वरून। मॅडम असं आहे की ज्या गुलकंदवरचा विषय आहे, तर जसं आता अंदाज आहे कोणी प्रवासामध्ये आहे किंवा कुठे आहे, एखाद्याला हार्टचा विषय आला किंवा त्याला असं वाटतं की मला अटॅक आलं, तर तो वाटत आहे, अस्वस्थ वाटत आहे, इन दॅट केस सॉल्व्हिट आउट मोडी कोस्ट्रीन आणि

0: रोज डे या ज्या तिने थोड्या ज्या आपण एका वेळेस द्यायचं असं सजेशन कोणी आम्हाला दिलं होतं ते इट इज करेक्ट आहे का म्हणजे ते दिसता येईल तसं किंवा कॉम्प्युटरमुळे बीपी लो होतं असं मला ऐकलं होतं.
1: तुमचा प्रश्न खूप व्हॅलिड आहे, खूप चांगला प्रश्न विचारला. तुम्ही सफरमध्ये प्रवासामध्ये ट्रेनमध्ये कुठेही कोणाला तर त्रास होत असेल छातीमध्ये दुखण्याचं, तर हे गृहित नाही चालायचं की हे ऍसिडिटी होऊ शकते. ऍसिडिटी आणि हार्ट अटॅकमध्ये खूप डिफरन्स नसते लक्षणामध्ये, तर ऍसिडिटी बाजूला ठेवायची आणि जे हार्ट अटॅक आहे त्याला ट्रीटमेंट द्यायचं. जसं तुम्ही सांगितलं सॉर्बिट्रेट, इकोस्प्रिन आणि रोज डे, बरोबर तुमचं. पण इकोस्प्रिन लवकर रिलीज होत नाही, याच्या शिवाय जर तुम्ही डिस्प्रिन दिली, एस्प्रिनच आहे पण डिस्प्रिन काय करते त्याला तोंडामध्ये टाकलं विरघळून जाते. उसको आप चबा सकते हैं, पानी से नहीं पीना है, उससे एब्सॉर्प्शन फास्ट होता है, लवकर रिलीज होते आणि रक्तामध्ये लवकर पोहोचते विदिन 1 or 2 minutes. तर त्या गोळीचा इफेक्ट लवकर येते. सॉर्बिट्रेट तेवढी आवश्यकता नाही आहे त्याची. सॉर्बिट्रेट काय करते फक्त दुखणं कमी करते, बाकी काहीच करत नाही. आणि रोज डे पण एकदम जरुरी नाही आहे, रोजवास्टॅटिन काही आवश्यकता नाही आहे, पण डिस्प्रिन सगळ्यात जास्त आवश्यकता आहे. सो डाऊटमध्ये जेव्हा तुम्ही आहात तर ऍसिडिटी न ट्रीट करता हार्ट अटॅक ट्रीट करायचं, त्याच्याने काहीही नुकसान नाही आणि हे लवकरात लवकर करायचं आपण.
2: जी बिलकुल. आज अगर हम देखे तो धूप बहुत बढ रही है और ऐसे में चक्कर आना या गिर जाना ये रास्ते पे भी कई बार देखा जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे. पहले एक फोन ले लेते हैं. हेलो.
3: हेलो,
2: नमस्कार.
3: हेलो,
2: नमस्कार, बोलिए.
3: हाँ नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था.
2: जी पूछिए.
3: कभी कभी मिडनाइट वगैरह में अचानक से किसकी मतलब सांस रुक जाती है, अनकंफर्टेबल वो मोमेंट ही होता है.
1: जी जी जी, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका. अचानक मोमेंटरली सांस रुक जाना नींद में, इसको ओबेसिटी स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं. जो अत्यधिक मोटे लोग रहते हैं इन लोगों को अत्यधिक चर्बी रहती है पेट में, वो चर्बी छाती पे गिरती है और गर्दन में भी चर्बी होने की वजह से इनकी मोमेंटरली जैसे आपने बोला सांस रुकती है, उस वक्त ऑक्सीजन कम हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स का अचानक नींद में देहांत हो सकता है. तो जब आपको कोई ऐसा दिख रहा है कि अचानक मोमेंटरली सांस फूल रही रुक रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टरी सलाह लेके बायपैप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर, जो अपने चेहरे पर लगाया जाता है एक मशीन द्वारा. इससे क्या होगा कि हमारी सांस की नली में अकुचन सिकुड़ापन नहीं आएगा, चर्बी की वजह से कोलैप्स होगी और नियमित रूप से नींद में सांस अच्छी चलती रहेगी पॉजिटिव प्रेशर द्वारा, ऑक्सीजन कम नहीं होगा. तो आमतौर पे जो आपने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो मोटे लोगों में पाया जाता है, इसके लक्षण है, इसमें अचानक मृत्यु कॉमन है.
2: जी हम बातचीत कर रहे थे कि धूप के कारण अगर कोई चक्कर आके गिर जाता है या फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, तो रास्ते पे चलते हुए ऐसा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं?
1: जनरली ये हीट स्ट्रोक डिहाइड्रेशन से होता है, इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पेशेंट का शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इससे सोडियम पोटेशियम भी कम हो जाता है. तो ऐसे मरीज में तुरंत इसको ठंडी जगह में ले जाया जाए जहाँ पे हवा कूलर है, और ऐसी जगह में उसको रेस्ट करने दिया जाए और पानी की मात्रा दी जाएगा. पेशेंट होश में है तो उसको तुरंत पानी देना चाहिए, ORS देना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और ठंडी जगह में रखना चाहिए, ठंडे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए ताकि फीवर कम हो जाए, और जितना जल्दी हो सके अस्पताल में ले जाना चाहिए. वहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट से ये पेशेंट तुरंत ठीक हो सकता है.
2: जी बिल्कुल. हमने हार्ट अटैक्स के बारे में, ब्रेन अटैक्स के बारे में और एक्सीडेंट्स के बारे में तो बात कर ली. बात अब थोड़ी सी ले चलते हैं पॉइजनिंग के बारे में. पॉइजनिंग के क्या क्या कारण होते हैं, मतलब किस किस तरह से पॉइजनिंग हो सकती है?
1: जी पॉइजनिंग एक्सीडेंटल हो सकती है कि गलती से कोई बॉटल रखी हुई है, पेशेंट ने पानी समझ के या शरबत समझ के पी ली. एक्सीडेंटल पॉइजनिंग रेयर है क्योंकि अवेयरनेस काफी आ चुका है, हमको मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए. आमतौर पे बच्चे और बूढ़े एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से ग्रसित ज्यादा होते हैं क्योंकि इनमें समझ कम होती है, ये लोग नहीं जानते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. और दूसरा होता है सुसाइडल पॉइजनिंग, जिसमें इंटेंशनली ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकेट्रिक बीमारी और डिप्रेशन की वजह से मरीज अपनी जान लेना चाहता है और पॉइजन पी लेता है. इजीली अवेलेबल जो पॉइजन है वो डेटॉल या जो बाथरूम साफ करने की एसिड होती है वो, या कीटनाशक दवाइयां रहती है खेत में डालने के लिए, झाड़ों पे

0: के लिए आमतौर पे लोग इस तरह के पॉइजन का यूज करते हैं, और ऐसे में अगर आप जैसे आपको मालूम पड़ता है ऐसी कंडीशन में तुरंत अस्पताल पहुंचें, तो हम लोग ये पॉइजन्स को पेट में से निकाल के साफ कर लेते हैं। आप कृपया करके घर पे वॉमिटिंग इंड्यूस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वॉमिटिंग अगर करवाते हैं तो कभी कभी ये पॉइजन ज्यादा फैल जाता है और फेफड़ों में चले जाता है, एस्पिरेशन हो जाता है, उससे निमोनिया के लक्षण हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट को बिना कुछ खाना पीना दिए उसको अस्पताल लेके आना है, और अस्पताल में प्राइमरी एड से जल्द ये पेशेंट ठीक हो सकता है।
1: जी कई बार सांप के काटने से या बिच्छू के काटने से भी पॉइजनिंग हो सकती है, तो इसके लिए क्या फर्स्ट एड हम कर सकते हैं और किस तरह की दवाइयां उपलब्ध होती हैं?
0: कोई भी फर्स्ट एड मत कीजिए, जैसे कपड़ा बांधना या चीरा लगा देना, ऐसा कुछ मत कीजिए। सांप के काटने की वजह से अगर हो रहा है तो उस हाथ पैर को बिना हिलाए अगर सीधे सोई हुए अवस्था में कोई उन्हें उठा के अस्पताल पहुंचाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो ये पॉइजन जल्दी ब्लड में फैल जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो तुरंत लेटी अवस्था में कोई अगर दूसरा व्यक्ति इन्हें अस्पताल पहुंचाता है स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस में, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और 90% स्नेक बाइट्स नॉन पॉइजनस रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। 10% ही स्नेक बाइट्स पॉइजनस रहते हैं, उसकी भी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। समय रहते अगर आप पॉइजन स्नेक्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं, स्नेक वेनम अवेलेबल है इजीली, और जो स्कॉर्पियन बाइट है बिच्छू के काटने से, उससे भी जनरली कुछ नहीं होता अगर आप सही समय पे अस्पताल पहुंच गए तो जिंदगी को बचाया जा सकता है और काफी अच्छी सुविधाएं और ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
1: बिल्कुल। फूड पॉइजनिंग के बारे में भी थोड़ा सी बात कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमनली सुना जाता है, और ये किस किस वजह से होता है और इसके लिए ये ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए?
0: फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है अगर हम लोग दूषित पानी या कोई खराब रखा हुआ खाना जो एक दो दिन से रखा हुआ है, या उसमें कुछ किसी ने अपने गंदे हाथ डाल दिए जो कीटाणु चले गए, ऐसे चीज को खाने या पीने से लूज मोशंस वॉमिटिंग होते हैं, इसे जनरल टर्म में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। हमारे इसमें इसको डायरिया डिसेंट्री कहते हैं। इससे शरीर में अचानक पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये काफी आसानी से प्रिवेंटेबल कारण है मतलब बीमारी को कम करने का और सीरियस बीमारी को रोकने का, तो इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन जरूरी है कि हम लोग ऐसी जगह से पानी या कुछ ना खाएं जहाँ पे दूषित थोड़ा गंदे तरीके से बनाया जा रहा है, जहाँ प्रॉपर केयर नहीं ली जा रही है साफ सफाई की, हाथों से ही सब कुछ पानी पूरी खिला रहे हैं या हाथों से भेल बना रहे हैं, ग्लोव्स का यूज नहीं कर रहे। तो थोड़ी ऐसी जगह पे जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं की जा रही है, पानी साफ नहीं लग रहा है, तो वैसी जगह पे खाना ना खाएं, पानी ना पिए। हो सके तो ऐसी सीजन में घर से ही पानी लेके निकलें और 2-3 बॉटल साथ में रखें, क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी पीना जरूरी है। तो आप अपना घर से पानी लेके निकलें और जहां तक हो सके बाहर ना खाएं, या अगर खाएं तो अच्छी जगह पे जहां हाइजीनिक है, साफ सुथरापन है, वहीं पर खाएं।
1: बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम के जो 30 मिनट है वो खत्म होते आ रहे हैं, बस आखिरी 1.5 मिनट हमारे पास बचता है, तो इन 1.5 मिनट में हम क्या बताएंगे अपने श्रोताओं को कि ये 60 मिनट किस तरह से हम यूटिलाइज करें?
0: बहुत जरूरी है ये 60 मिनट, और आपने जो मेरे को संदेश देने के लिए बोला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैनिक न करें, शांत रहें, और अपने करीब के अस्पताल से हेल्प एम्बुलेंस जरूर मंगाएं। हम लोग सब चीज़ की तैयारी रखते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल में इमरजेंसी नंबर्स, हमारे घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको क्या बीमारी है, उनको क्या दवाइयाँ चल रही हैं, वो लिख के रखना जरूरी है। किस कंडीशन में डॉक्टर की हेल्प लेनी है वो जानना जरूरी है। तो बिना पैनिक हुए करीब अस्पताल में से एम्बुलेंस बुला के पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करना, जिससे इमीजिएटली उनको हेल्प मिल सके, और ऐसे अस्पताल में जहाँ पे ICU इमरजेंसी सेवा 24 आवर्स अवेलेबल है। ऐसा ना जो सोचे कि रात को 2 बजे डॉक्टर को क्यों जगाएं, जरूर जगाइए, डॉक्टर को फोन करके पूछिए और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचिए। कोई भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि इससे एक कीमती जान बच सकती है।
1: बिल्कुल। श्रोताओं, आप सुन रहे थे क्रिटिकेयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला नंदकिशोर पोकरे और देवानंद आर्य से, प्रस्तुति सहयोग मिला अतुल साखरकर से, और प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरसपुरे। डॉक्टर दीपक जेसवानी के साथ मैं कल्याणी गोखले अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हेलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध

0: भारतीवरून एकाच वेळी
1: की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: मिश्र संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर. गैर फिल्मी हिंदी गीतों के इस प्रोग्राम में आइए सबसे पहले सुनते हैं कुणाल गांजावाला का गाया ये गीत.

समीर का लिखा ये गीत आपने सुना, नदीम श्रवण का म्यूजिक और आवाज़ थी राहुल वैद्य की। गैर फिल्मी हिंदी गीतों का प्रोग्राम मिश्र संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। लीजिए सुनिए के गौतम का गाया लिखा और संगीत में ढाला ये गीत।

निहाल और प्रांशु का गाया ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा और संगीत में ढाला था प्रांशु ने। गैर फिल्मी हिंदी गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। आइए सुनते हैं आराम्या का गाया ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए हिंदी फिल्मी गीतों की मधुमालती बस कुछ ही क्षणों में।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: मधुमालती सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. आपके पसंद के गीतों की कहानी, आप ही के खतों की जुबानी, आज की विशेष मधुमालती लेकर आई हूँ आपके लिए मैं कल्याणी. श्रोताओं, आज विशेष मधुमालती है क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद किए हुए गीत. तो चलिए आज के प्रोग्राम का ये पहला गीत सुनते हैं.

कर्मा फिल्म का ये गीत आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों का गाया, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, संगीत में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और इस प्यारे से गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी थी अतुल गौतमी धम्मदीना अरुण काले एडी कामड़े, ये सारे श्रोता है जिला कोल्हापुर से, तालुका हाथ कलंग ले गए। तुषार कुरणे, प्रसीक कामड़े, एकता कामड़े, मेघना कुरणे, उत्कर्षा कामड़े, अरुण येडुळकर, ये श्रोता है मुकाम सांदूर जिला कोल्हापुर के। इनके साथ इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजते हैं सिरसपेट नागपुर के श्रोता सीमा वाघमारे, संगीता वाघमारे, प्रीति साइली, आनंद वाघमारे, एडविन एंथनी वैष्णवी, सुचिता वाघमारे और समस्त वाघमारे परिवार। विनोद कामड़े श्रोता है जिला भंडारा के, उन्हीं के साथ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोता आशा रेडियो श्रोता संघ से लिखते हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई के श्रोता सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के श्रोता शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, दवहनी गवाणकर, इन सभी श्रोताओं का पसंद किया हुआ गीत अभी आपने सुना कर्मा।

फिल्म से। आइए अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया। सावन कुमार का लिखा ये गीत, संगीत में ढाला है उषा खन्ना ने, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजते हैं बबन मोहनकर, शुभम मोहनकर, मयूर मोहनकर, भगवान शंकर राव, गीतांश, शेवंताबाई, वनीता और समस्त मोहन।

भगवान शंकर राव, गीतांश, शेवंताबाई, वनीता और समस्त मोहनकर परिवार, इन्हीं के साथ इनका मित्र परिवार है नयन डहारे हनुमान चौक नागपुर से। बोरगांव से श्रोता लिख भेजते हैं चंद्रकांत पखीड़े, प्रशांत पखीड़े, स्नेहा पखीड़े और ललिता निमजे। चलिए इन सब के साथ हम भी सुनते हैं सौतन फिल्म का ये प्यारा प्यारा गीत।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: मधुमालती प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है. आज की ये विशेष मधुमालती आपके लिए लेकर आई हूँ मैं कल्याणी. ये मधुमालती है विशेष क्योंकि आज हम आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद किए हुए गीत और आपकी ये पसंद हम तक पहुँचती हैं आपकी खतों से. तो ये अगला खत हमारे पास आया है बदलापुर मुंबई से विजय वडालकर, लता वडालकर, अजिंक्य वडालकर इन श्रोताओं का. वारीपोला मैदान

नागपुर के श्रोता है जयराम वीरघरे, हरिचंद्र वीरघरे, निशा वीरघरे, भाग्यलक्ष्मी वीरघरे, विनोद निखार, रेशिमबाग चौक नागपुर के श्रोता अन्ना वाघमारे, नागेश सहारे, विश्वनाथ साठवने, सुशील तालेवार, बबन पाटिल, राकेश काटेवार, सलीम भाई, हेमराज पाटिल, उद्धव नेवले, बजरंग पार्क कामटी के श्रोता अशोक सायरे, अनीता सायरे, सुशील सायरे, शुभांगी सायरे, राहुल सायरे, प्रियंका सायरे तथा समस्त सायरे परिवार। चलिए आप सभी के पसंद का ये गीत हम भी सुनते हैं, निकाह फिल्म से, जिसे गाया है गुलाम अली ने, हसरत मोनी के बोल है और संगीत गुलाम अली का।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कल्याणी के साथ विशेष मधुमालती. चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं बागी 2 फिल्म से. आतिफ असलम का गाया ये गीत है, संगीत आरको का. और इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजते हैं महरनगर उमरखेड़ के श्रोता शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के श्रोता सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश. इन्हीं के साथ मानेवाड़ा रोड के श्रोता है देवेंद्र भटकर, अंकिता भटकर, न्यू ज्ञानेश्वर नगर के श्रोता लक्ष्मण देउलकर, संजीवनी देउलकर, मनोज देउलकर, मोहन दुर्गे और सेमिनरी हिल्स टीवी टावर के श्रोता है नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, दीक्षा डोंगर दिवे, रीमा डोंगर दिवे, राहुल डोंगर दिवे. चलिए आप सबके साथ हम भी सुनते हैं बागी 2 फिल्म का ये प्यारा सा गीत.

महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे, ये श्रोता है वरुण जौलका के। बेरड़ी से राजेश सूनी, कंचन सूनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे। सेंट्रल एवेन्यू के श्रोता है अशोक कुमार अग्रवाल। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के श्रोता है हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जयतेग बीरक और मीका गीरक। आइए इन सभी श्रोताओं का पसंद किया हुआ गीत हम भी सुनते हैं। ये गीत है दिल का क्या कसूर इस फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने, समीर के बोल, संगीत नदीम श्रवण का।

मधुमालती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम में लेने जा रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

पाचुरकर, किरणताई पाचुरकर, उन्नतीताई पाचुरकर, प्रज्वल दादा पाचुरकर, दिलीप पंडितकर, संगीता पंडितकर और समस्त परिवार ने, ये श्रोता है महादेव अमलेश्वर के, डोमन ठाकुर, सुनमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजल ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, इनके साथ बेरडी नागपुर के श्रोता है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। विशेष मधुमालती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से कल्याणी के साथ। लीजिए पाकीज़ा फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर का गाया। इस गीत को लिखा कमाल अमरोही ने है और संगीत गुलाम मोहम्मद का है और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिलती है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के श्रोता कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सलिया, शोएब खान, पोत्रा मुमताज खान, राव भाई, शहीद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, इन श्रोताओं की ये फरमाइश है। इसी के साथ नारायणपुर कोटवा बलिया के श्रोता है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर के श्रोता है प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। चलिए आप सबके साथ हम भी सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म का ये गीत।

0: मधुमालती प्रोग्राम का अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी मां

0: श्रोताओं, आज की मधुमालती अब यहीं संपन्न करते हैं। कल्याणी को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप सुनिए मुख्य समाचार मराठी में।
1: आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नॉर्वेच्या दौऱ्यावर असून भारत नॉर्डिक शिखर परिषदेत आज ते सहभागी होणार आहे। तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, संरक्षण, शाश्वतता आणि व्यापार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये नॉर्डिक राष्ट्रांसोबतची भारताची धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करणं हा या परिषदेचा उद्देश आहे। देशातल्या अनेक भागात उष्णतेची लाट असून त्यापासून सावध राहण्यासाठी आयुष मंत्रालयानं मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहे। सुस्ती, डोकेदुखी, मळमळ, मानसिक स्थितीत बदल, शरीराचं उच्च तापमान, शुष्कता, चक्कर अशी लक्षणं दिसली तर धोक्याचा इशारा मानून वेळीच त्याकडे लक्ष देणं हे आवश्यक आहे। उष्माघात ही वैद्यकीयदृष्ट्या आपत्कालीन स्थिती असून त्याकडे ताबडतोब लक्ष देण्याची गरज आहे। तीव्र आघाताच्या बाबतीत 108 आणि 102 या आपत्कालीन हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचं आवाहन मंत्रालयानं केलंय। महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळानं यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 2,47,000 क्विंटल दर्जेदार बियाण्याचं नियोजन केलंय। हे बियाणं अधिकृत विक्रेत्यांमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याला सुरुवात झाली आहे। शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह बियाणं उपलब्ध व्हावं आणि बोगस बियाण्यांच्या विक्रीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी यंदा केंद्र सरकारच्या साथी पोर्टलच्या माध्यमातून विक्री केली जाते। आकाशवाणी नागपूर केंद्राद्वारे ऑल इंडिया रेडिओला 90 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं स्वरसंध्या 2026 या विशेष सुगम संगीत सभेचं आयोजन आज संध्याकाळी 6:30 सायंटिफिक सभागृह लक्ष्मीनगर इथं करण्यात आलंय। या सभेत सुगम गायक श्याम पोहरे यांची भक्तिगीतं, प्रसन्न जोशी यांचं गझल गायन तसंच सुगम गायिका हेमलता पोपटकर आणि मोनिका भोयर यांची भावगीतं सादर होतील। संगीतप्रेमी श्रोत्यांसाठी आकाशवाणी नागपूर केंद्रातर्फे हा कार्यक्रम निःशुल्क आहे, मात्र प्रवेशपत्र आवश्यक असून रसिकांनी त्यासाठी आकाशवाणी नागपूर केंद्राच्या सिव्हिल लाईन इथल्या कार्यालयाला संपर्क साधावा। बुलडाणा जिल्ह्यातल्या चिखली तालुक्यात नागपूर आणि अकोला इथल्या दहशतवाद विरोधी पथकानं संयुक्त कारवाई करत मोठा शस्त्रसाठा जप्त केलाय। अंत्रिकोळी गावखेडा परिसरात झालेल्या या कारवाईत 2 देशी बनावटीचे पिस्तूल, 4 मॅग्झिन, तब्बल 92 जिवंत काडतुसं, चाकू आणि चारचाकी वाहन जप्त करण्यात आलं असून 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। याबरोबरच हे ठळक बातमीपत्र संपलं। यापुढील प्रादेशिक बातमीपत्र संध्याकाळी 6:05 ऐकता येईल। नमस्कार।
0: आकाशवाणी नागपूर का ये है विविध भारती केंद्र FM 100.6 MHz पर। हमारा अगला प्रोग्राम सुनिए हमारे मुंबई केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
2: दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
5: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
2: पहनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में प्रदीप के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से, प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से, प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी, और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है, और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका, हमारा, हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं, और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है, या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं, यानी

जीवन कितना सत्य है आपके लिए, ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं। और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में, किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियां, शैतानियां और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है, परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है। और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ

रहता है। अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी संगी साथी सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नैना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है शैशव काल की मुस्कान। किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना अति परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं हमारे श्रोता। लिखते हैं कि आपने

शैशव काल की मुस्कान किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है, ना थी परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं हमारे श्रोता। लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है, हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा।

0: गया है, सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई, बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पगिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियाँ हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।
1: सच्चे मन के सच्चे

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो

आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो उन्होंने मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता, और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होती है, और कहते हैं कि माँ का माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है। मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था, पड़ोस की गुलाटी अंकल के हाथे में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए, और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी

थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आरडी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में, किसी की फूलों जैसी हजी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हजी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भोगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे, फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का गीत, आरडी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे TVS चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की दुर्गंध बढ़ जाती थी और पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम काम आते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे और ₹50 बहुत बड़ी चीज होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आती आती यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हमउम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हैं। हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारे श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे।
हमारी कौशोता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सब किसे कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़ी।

ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी। बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे। फिल्मों को देखकर फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है। वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना।

अलका याग्निक की आवाज है. और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे. हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था. हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं. हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है. और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं. और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो. किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय. हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं. तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं. अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं. बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है.

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है। इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ सुरीला सफर में। सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद, और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

जिसमें रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिसकर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वे

0: कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों

0: ऊपर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
4: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस

0: लोधी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।
4: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी मा

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल।

0: ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए बहुत

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
4: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
5: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
6: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
7: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जय किशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली
0: क्या हालचाल?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
0: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं।
0: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं, तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, हमें जान रहा है,
0: ख्याल रखने वाला
1: जी।
0: है ना। विषय बता दे।
1: चलिए,
0: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम, यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये, बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
0: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे, है ना?
1: आंखों से डर जाते थे।
0: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं, है ना?
0: सचमुच
1: जगमगाते हुए
0: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
0: और
1: हम
0: उसको कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
0: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है, अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोबरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डटकर मुकाबला कर रही थी।

0: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है, और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
0: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी, और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा

0: धन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई वो।
1: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
0: सही बात है बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है।
1: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी, जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
0: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
1: योग्यता है
0: उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
1: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के मुंह से।
0: वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत
0: धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्ति क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत

0: काम आता है.
1: क्या
0: तो
1: बात है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने. जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना.
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही. एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है. ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है. इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है. वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है. छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है. उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है. वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं. फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं.
0: बात तो बिल्कुल सही की कही. और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं. तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना.

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ऐसी हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस

0: नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती, इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देशे कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं। भाई, आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी ने किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई, मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे। अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे, हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार

0: मम्मी बचा लेती थी, तो देखो मम्मी तो यहाँ भी
1: वो
0: काम आई
1: आग
0: है।
1: का तारा होते ना बच्चे।
0: हाँ, इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था। पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था उनको, मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा। शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है। यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता। मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: सोनाली, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम, उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के।
0: चलो।

0: यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉयड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉयड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
2: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच के हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी

0: संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो, जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
1: जी,
0: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
1: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू हुआ।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया, और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते ना गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी, उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया, एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी, और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर, और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने, वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई, और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
0: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
1: कहां से कहां ये बात, देखिए
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, और यहाँ से एक किस्म से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े हैं यहां।

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ही आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना, बराबर की लाइनें थी और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत

0: इंस्टेंट फूड की तरह,
1: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था
0: जी, इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना,
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है एक गाने के बारे में बताया है।
1: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े

0: पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
0: जी जी।
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
0: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी। जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराए, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगे नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई उस, जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार। और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ। फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती
0: अभी भी कायम है?
1: अच्छा।
0: जी हाँ।
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
0: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
0: है। जी।
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
0: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी। और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा।
0: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियू छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है
0: जी,
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा।
0: हाँ।
1: वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा?
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो कानों में
0: रस शुक्रिया
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है। और ये आना चाहिए, तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते थे?
0: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है, तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए। तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे जाना है अपना अहमदाबाद में, एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो

0: कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में। जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में आप ही क्या सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते ना टॉप पे रहा काफी दिनों तक, और यहीं नहीं जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हटकर के हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कोशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोट जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से. इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए. और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसे ही रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी. बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे. उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे. लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं.
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ. अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ. वो मुझे बहुत आनंद देता है.
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें.
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए.

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिलिप्स शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा अच्छी से मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुकी होंगी, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है स्टेज का, एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: और ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से?

0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं, तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूँ मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूँ या खुद गाऊँ। अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहाँ मेरे मन को एक कहते ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
0: जी
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊं कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना। हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहदिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

ये दिल जो गमगीन हुआ था और ये नजरें भी जो खफा हो गई, चलो भूल जाते हैं वो बातें कल की।

कैसे बताएं कि जो मोहब्बत खिली है हमारे बीच वो कितनी है। चमचमा रहे हैं जो आसमान में, गिन लो उन्हें, ये तो बस उन सितारों जितनी है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

बोल दिए हैं अनकहे बोल, बजने लगी है मोहब्बत की सरगम, कैसा इत्तेफाक है, सज रही है उम्मीद की वादियां और बस गई हैं अरमानों की बस्तियां, ये कैसा इत्तेफाक है।

चमकते रुखसार ने, मचलती जुल्फों ने उड़ा दिए हैं होश। दीवाना तो था ही ये दिल, अब है मतवाला भी और है मदहोश।

0: दिल तो पे।
1: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।

0: तराने नए पुराने
1: बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम तराने नए पुराने में। लीजिए इसकी पहली पेशकश।

तराने नए पुराने की ये पहली पेशकश आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म से। लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें, देव कोहली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत मैंने दिल तुझको दिया से, डब्बू मलिक का संगीत, फैज अनवर ने से लिखा।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, कुमार सानू की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा। संगीत जतिन ललित का।

0: मदहोश दिल की धड़कन ये गीत अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है फिल्म से लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और जतिन ललित का संगीत।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।
2: FM 100.6 मेगाहर्ट्ज वर विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे। यानंतर ठीक 6 वाजता दिल्ली केंद्राच्या हिंदीतून बातम्या सहक्षेपित करीत आहोत आणि श्रोते हो त्यानंतर

0: भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टेड आईटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या पहली अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को

मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम नागपुर, एंड हमारी एक नेशनल बॉडी है जिसका नाम है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, विच इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड ऑफ डायबिटोलॉजी.

एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्ट हूं और मुझे बड़ा आनंद होता है यह बताते हुए और यह सुनते हुए कि ऑल इंडिया रेडियो का हमारे 90 वर्ष पूरे हुए हैं उसके साथ में। और मुझे तो जहां तक याद है जिस दिन से मैंने होश संभाला है उस दिन से मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनते आ रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है कि हम बचपन में बेला के फूल कार्यक्रम सुना करते थे और उसके बाद ही हमें नींद आती थी और दूसरा उस समय कोई साधन नहीं था। तो इससे जुड़ा हुआ तो बचपन से हूं, हमारे चाहे वो स्कूल डेज हो, बचपना हो, कॉलेज डेज हो और पढ़ाई हो, पर उसके बाद जब से मैंने डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस चालू करी है और जब से करियर चालू किया है तब से एजुकेशन वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड इट वॉज ऑल इंडिया रेडियो जिसने कि प्रोएक्टिवली हमारे कम से कम 25 वर्षों से 2001 या 2000 से हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे मुझे याद है कि पहला कार्यक्रम हमने लिया था उसका नाम था जीवन के रंग मधुमेह के संग, और हमने यह कार्यक्रम लगातार कई वर्षों तक और आज भी उसे हेलो डॉक्टर के नाम से हमने 25 वर्षों से चालू रखा है। और इसका मेन उद्देश्य है पब्लिक को अवेयरनेस करना, और मेरे ख्याल से नागपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां हमने यह कार्यक्रम पहली बार पूरे देश में लाइव फोन इन प्रोग्राम ऑन हेल्थ ऑन डायबिटीज चालू किया था, ये पहला स्टेशन है। और उस समय भी मुझे अच्छे से याद है कि हमें बॉम्बे ऑफिस से और दिल्ली ऑफिस से भी परमिशन लेनी पड़ी थी और यह कार्यक्रम शुरू किया था, और वह कार्यक्रम आज की तारीख में पूरे देश में और पूरे विश्व में बड़े नाम कमा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ जाता हूं तो एक स्लाइड जरूर से दिखाता हूं कि देखिए हम ऑल इंडिया रेडियो से यह कार्यक्रम करते हैं और यह जागरूकता का अभियान पूरे देश में कहीं ना कहीं लाके हम इसका एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे, और इसमें जिससे जो जागरूकता लोगों में बढ़ी है उससे डेफिनेटली लोगों में कॉम्प्लिकेशंस कम हुए हैं, लोगों में डायग्नोसिस समय पर हो रहा है, और उससे उनके जीवन में कहीं ना कहीं खुशियां आ रही है और हम उन्हें स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कार्य आगे भी इसी तरह चलता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं और बधाइयां ऑल इंडिया रेडियो को।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम जयमाला में। मैं हूं आज आपकी साथी अनुराधा। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी दस, समीर ने इसे लिखा था। लीजिए अब सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में अगला गीत, भारतीय सेना।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फिल्म ज्वेल थीफ से लीजिए ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एसटी बर्मन का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम जयमाला विविध भारती से।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम जयमाला।

ये तो होना ही था खेल खेल में, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दूसरा आदमी, यह है फिल्म का नाम, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में।

0: नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम पॉप एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारतीय

0: अरे अब तक घंटी नहीं बजी, 10 बज चुके हैं, अब तक तो घंटी बज जानी चाहिए। क्या बात है, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है आज?
1: अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता, मैंने खुद प्रिंसिपल को ऑफिस में जाते देखा है।
0: फिर क्या बात है, आओ ऑफिस में चलकर शर्मा से पूछे।
1: हाँ हाँ चलो।
0: शर्मा जी क्या बात है, 10 बज चुके हैं, कॉलेज की घंटी नहीं बजेगी आज?
2: क्या बताऊं, कहां मर गए आज सबके सब चपरासी। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास में चलिए, मैं जल्दी से घंटी बजवाता हूँ।
1: अच्छा ठीक है।
3: सर रामरथ अभी तक नहीं आया, वक्त हो गया है, घंटी कौन बजाएगा?
4: हाँ शर्मा जी, वक्त हो गया है, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, मगर रामरथ अब तक क्यों नहीं आया? खैर वासुदेव को कहिए कि घंटी बजा दे।
3: वासुदेव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है सर।
4: तो फिर साइंस लेबोरेटरी के फरीद को बुलाकर जल्दी से घंटी बजवाइए।
3: सर मालूम हुआ है कि फरीद भी आज नहीं आया।
4: ओफो, क्या कॉलेज के सभी चपरासियों ने हड़ताल की है? राम रख नहीं, वासुदेव नहीं, फरीद नहीं, तो कोई और होगा, किसी से भी बजवा लीजिए घंटी।
3: सर मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ, मेरी सुनता ही कौन है? हरनाम सिंह से कहा था कि भैया जरा घंटी बजा देना, तो कहने लगा कि मेरा काम सिर्फ ऑर्डर घुमाना है, घंटी बजाना नहीं। पर आप ही बताइए प्रिंसिपल साहब, मैं क्या करूं?
4: यही तो कमी है शर्मा जी आप में, रामरख है नहीं, दूसरा कोई चपरासी घंटी बजाता नहीं, ऐसी हालत में आपके सामने दूसरा कोई हल नहीं है।
3: सर आप भी मुझ पर ही खफा होने लगे, मुझे रास्ता तो बताइए कि मैं क्या करूं?
4: अरे भले आदमी, इसमें करना ही क्या है, 10 कब के बज चुके हैं, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी। जाइए आप ही जल्दी से घंटी बजा दीजिए।
3: क्या क्या मैं बजाऊं घंटी?
4: क्या हो गया, अगर आज घंटी आप ही बजा देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा?
3: सर आज तक मैंने अपनी साइकिल की घंटी के सिवाय दूसरी कोई घंटी नहीं बजाई।
4: आप भी हद करते हैं शर्मा जी। अच्छा जाइए काम करिए अपना, मैं बजा देता हूँ घंटी।
3: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए, मैं बजाता हूँ घंटी, मेरे होते हुए भला आप तकलीफ करेंगे?
4: तो फिर जाइए और जल्दी से घंटी बजा डालिए।
3: जाता हूँ सर जाता हूँ, बस एक ख्याल आता है सर, वरना अब तक तो मैंने कब की घंटी बजा दी होती।
4: कह डालिए कौन सा ख्याल है वो?
3: आप तो जानते ही हैं सर कि मेरा साला इसी कॉलेज में पढ़ता है,
4: तो
3: अगर घंटी बजाते हुए कहीं उसने मुझे देख लिया और घर जाकर अपनी बहन को कह दिया
4: तो क्या होगा?
3: तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा सर।
4: वो कौन सी मुश्किल है जिसमें आप फंस जाएंगे?
3: अब क्या अर्ज करूं सर, घर जमाई क्या बन गया हूँ, मैंने तो गुलामी ही लिख कर दे दी है।
4: तो अब आप दफा हो जाइए, मैं खुद ही घंटी बजा लूंगा।
3: नहीं नहीं नहीं सर, हाँ आप बैठिए सर, मैं जाता हूँ बजाता हूँ घंटी।
5: मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
4: हाँ हाँ आओ आओ, क्या बात?
5: सर मैं यशपाल से तंग आ गई हूँ, जरा उसे समझाइए, अगर मेरे पिताजी को उसकी हरकतों का पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, उनका गुस्सा बहुत खराब है।
4: क्या हुआ आखिर, कुछ कहो तो।
5: सर वो प्रेम दीवाना है, उसने दुनिया भर में डंका पीट दिया है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, जबकि मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है।
4: मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने और कहने की?
5: हिम्मत का क्या है सर, आजकल कोई भी लड़की किसी लड़के से जरा हंसकर बोल ले तो बस वो समझता है कि लड़की उसके प्रेम में पागल है। सचमुच ये लड़के बड़े दीवाने होते हैं।
4: तो मतलब ये हुआ कि तुम भी यशपाल से हंसकर बोल चुकी हो, हाँ?
5: इसमें बुराई ही क्या थी सर, एक दिन पार्क में मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठी थी, यशपाल भी उधर आ निकला, मैंने सहपाठी समझकर अपनी बहन और जीजा जी से उसका परिचय करवाया। उस दिन के बाद उसने एक दो बार मुझसे किताबें मांगी, मैंने दे भी दी, बस इसी से उसको गलतफहमी हो गई कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। अब आप ही बताइए किसमें मेरा क्या कसूर है?
4: पर आज क्या बात हुई, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो?
5: आज तो बात बहुत बिगड़ गई है सर, मैं कॉलेज के फाटक में घुसी ही थी कि किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा, इस पर यशपाल उस पर बिगड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मेरे बारे में इस तरह की लड़ाई झगड़े हों ये अच्छा नहीं है सर, इसमें मेरी बदनामी होती है।
4: कहाँ है वो लोग?
6: वो लोग फाटक के पास झगड़ रहे हैं।
4: अच्छा तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अभी देखता हूँ।

0: कैसे लगा रखा है? जाओ अपनी अपनी क्लासों में। यशपाल तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। सुनिए शर्मा जी, ड्राइवर से कहिए कि सुरेंद्र को जल्दी से मेरी कार में अस्पताल ले जाए।
1: जी बहुत अच्छा सर। अरे कहाँ? अरे वासुदेव भी छुट्टी पर गया है।
0: तो क्या बात थी यशपाल?
2: बात कुछ खास नहीं थी सर, सुरेंद्र मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहा था। मैंने उसे मना किया तो वो गर्म हो गया, बात बढ़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई।
0: हाथापाई भी ऐसी कि तुमने सुरेंद्र का सिर ही फोड़ दिया? ऐसा क्या व्यक्तिगत मामला था तुम्हारा कि उसे दखल देने की जरूरत पड़ी और तुम्हें उसका सिर फोड़ने की जरूरत आ पड़ी?
2: कैसे बताऊं सर, शर्म आती है।
0: बहुत खूब, शर्म आती है और वो भी तुम्हें। अपने सहपाठी का सिर फोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब वजह बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। वक्त खराब मत करो मेरा, बोलो क्या बात थी, जल्दी बोलो।
2: सर वो मेरे प्राइवेट मामले में दखल दे रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ।
0: आखिर क्या प्राइवेट मामला है तुम्हारा, जवाब दो।
2: सर सुरेंद्र मेरे और सुजाता के बीच नाजायज दखलंदाजी कर रहा था।
0: क्या संबंध है तुम्हारा और सुजाता का?
2: सर हम दोनों एक दूसरे को।
0: हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को?
2: सर बात ये कि सुजाता मुझको और मैं सुजाता को।
0: रुक क्यों गए, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम सुजाता को और सुजाता तुमको, क्या?
2: असल बात ये है सर कि हम दोनों एक दूसरे को
0: प्रेम करते हैं।
2: यस सर।
0: प्यार करते हैं।
2: जी हाँ।
0: मोहब्बत करते हैं, यही ना?
2: जी हाँ सर, जी हाँ।
0: गधे हो तुम अव्वल दर्जे के।
2: जी
0: तुमने अपनी सारी शर्म और हया घोल कर पी डाली है। सुजाता तुमसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती।
2: मगर सर वो
0: तुम ही एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरी लड़की की इज्जत का।
2: मैंने क्या किया है सर, सब जानते हैं कि मैं और सुजाता काफी नजदीक हैं।
0: लगता है कि शर्म और अक्ल से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुमने ही डंका पीट रखा है। अगर सुजाता ने अपनी बहन और जीजा जी से तुम्हारा परिचय करवा दिया, तुम्हें अपनी किताबें दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान भी ली जाए कि तुम सुजाता से प्रेम करते हो, तो इसमें सुरेंद्र का सिर फोड़ने की नौबत कहाँ से आई?
2: सर मैं सुजाता से कुछ कहना चाहता था, तभी सुरेंद्र ने उसे छेड़ दिया। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, बस बात बढ़ गई।
0: तुम जैसे आवारा और जाहिल लड़के ही कॉलेज के नाम को बदनाम करते हैं। किसी लड़की की बदनामी का दर्द तुम्हें तब मालूम हो यशपाल, जब तुम्हें अपने बहन की बदनामी का दर्द उठाना पड़े।
2: सर मैंने किसी को बदनाम नहीं किया।
0: बको मत, चोरी और सीना चोरी, शर्म तो आती नहीं और ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। अगर सुजाता के पिताजी को मालूम हो गया तो क्या होगा? सुरेंद्र का सिर फूट गया है, उसके घर वाले यहाँ कॉलेज में आएंगे, उन्हें क्या जवाब दोगे तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? क्या करूं अब मैं तुम्हारा, पुलिस के हवाले कर दूं या कॉलेज से निकाल दूं?
2: नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं खतावार हूं, कसूरवार हूं। इस बार तो मैं दोस्तों के सिखाने से भूल कर बैठा।
0: कौन है ये दोस्त?
2: मेरी ही क्लास के लड़के हैं सर।
0: क्या सिखाया था उन्होंने?
2: यही कि सुजाता बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अगर यशपाल उसे काबू में लाकर दिखाए तो हम भी माने कि उसमें कुछ है।
0: और तुम उनकी फूंक में आकर कूद पड़े मैदान इश्क में। ये बताओ कि तुम्हारे कोई बहन है?
2: हाँ सर दो बहनें हैं।
0: फर्ज करो इसी तरह कोई तुम्हारी बहनों को बदनाम करने की कोशिश करे तो क्या करोगे तुम? चुप क्यों हो, जवाब दो।
2: सर ऐसी बात तो कोई भी नहीं सहन कर सकता।
0: तो जो बेजा हरकत तुम सहन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो सहन ही कर लेंगे? क्या तुमने ये समझ लिया है कि सुजाता के कोई है ही नहीं?
2: सर सच में मैं दोस्तों के कहने में आकर नादानी कर बैठा, मगर इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ।
0: बस बस ठीक है, मेरे पाँव पड़ने और क्षमा मांगने से क्या होगा? तुम्हारी हरकत से सुजाता को मानसिक कष्ट पहुँचा है और सुरेंद्र को शारीरिक पीड़ा, वे तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे?
2: मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा सर, पहले आप तो क्षमा कर दीजिए।
3: मैं अंदर आऊं सर?
0: आइए।
3: सर रामरख आ गया है।
0: रामरख आ गया है, कहाँ है?
3: बाहर बैठा है, लगता है कुछ नशा करके आया है।
0: अच्छा अंदर भेजिए उसे।
3: जी बहुत अच्छा सर।
4: जयराम जी की साहेब।
0: जयराम जी की, अब तक कहाँ थे तुम?
4: अस्पताल गए थे साहेब।
0: अस्पताल जाना था तो छुट्टी क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी लापरवाही से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों गए थे अस्पताल?
4: बीमारी तो हमें कुछ भी नहीं है साहेब।
0: बीमारी नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों गए थे?
4: कुछ काम से गए रहे साहब।
0: बीमारी

0: का इलाज कराने के सिवाय अस्पताल में क्या काम हो सकता है?
1: होता है साहब, आजकल अस्पताल में भी काम होता है।
0: क्या होता है, कुछ बोलोगे भी?
1: साहब, हम खून देने को गए थे।
0: खून? कैसा खून?
1: अपना खून साहब। कल यहाँ एक दुर्घटना हुई। अपने कॉलेज का एक लड़का मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था साहब। दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
0: अच्छा।
1: कल रात मैंने रेडियो पर एक ऐलान सुना था कि उसी छात्र को खून दिया जाना है, लेकिन ओआर रकम का खून मिल नहीं रहा है, और इसीलिए लोगों से दरखास्त की गई थी। प्रिंसिपल साहब, पिछले महीने जब कॉलेज में मेरे खून की जांच हुई थी ना, तो मुझे याद था कि मेरा खून उसी रकम का है, इसीलिए आज सुबह मैं अपना खून देने अस्पताल चला गया। इसी कारण मुझे देर हो गई। हम चपरासी जरूर हैं साहब, लेकिन हमें भी तो अपने छात्रों के लिए कुछ करना है ना साहब।
0: शाबाश रामरख, शाबाश। सचमुच तुमने बहुत नेक और बहादुरी का काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉलेज का एक चपरासी अपने कर्तव्य में इतना आगे निकल गया कि उसने पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूं रामरख। तुम्हारे आने से पहले जितना दुखी था उससे कई गुना अधिक खुश हुआ हूं। ये लो दूध पीना और तुम घर जाकर आराम करो।
1: नहीं साहब, नहीं, रुपए हम नहीं लेंगे।
0: क्यों?
1: अभी जो मन में खुशी है, रुपए लेने के बाद तो हमारा मन दुखी हो जाएगा साहब।
0: रामरख, ये रुपए मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। शरीर में कुछ कमजोरी आ गई होगी, दूध पियोगे तो कुछ चुस्ती आ जाएगी भैया।
1: नहीं साहब, हमका कमजोरी नहीं आई है, हमें तो और ताकत आ गई है। हम भी दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, इसी खुशी के आगे कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती साहब।
0: फिर भी रामरख, बात मानो और ये रुपए रख लो भैया।
1: हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, रुपए हमको नहीं चाहिए, ये रुपए ले लीजिए साहब।
0: अच्छा, तो घर जाकर आराम ही करो, हम खुद घंटी बजा लेंगे।
1: पर साहब, घंटी बजाने का काम तो हमारा है ना।
0: अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और आराम करो।
1: अच्छा साहब, जाता हूँ। मैं तो डर ही गया था कि देर हो गई है, आज साहब नाराज होंगे।
0: अरे नहीं नहीं, नाराज गलत कामों पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा, अब तुम जाओ।
1: अच्छा साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते। यशपाल
2: जी,
0: तुम सुन रहे थे ये सब कुछ?
2: हाँ सर।
0: देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी।
2: समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है। मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है।
0: तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है।
2: हाँ सर।
0: आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है। यशपाल, ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है। अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बनो।
2: यस सर।
3: प्रेम दीवाना, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ब्रजभूषण की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे पुरुषोत्तम दारवेहकर।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत फिल्म से। और अब ऊंचाई फिल्म से ये गीत अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत है, इरशाद कामिल ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

ओके जानू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शाशा तिरुपति, आशिमा महाजन और साथियों की आवाजें, ए आर रहमान का संगीत था।

0: एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र। कुछ ही पल में दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: सुरीली धड़कन, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे, खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रोग्राम आपके लिए लीजिए हाजिर है।
4: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी मा

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। लीजिए आपके लिए मैं अगली पेशकश। फिल्म वक्त से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। रवि की धुन है और

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

0: दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, ओपी नैयर का संगीत।
1: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो की सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

वेनसडे के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला, पहली बार मुख्य भूमिका में नजर

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं, तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते, बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई, फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा? बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनो।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं,

वो दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के मन के।

ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

FM 100.6 MHz पर विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पल में दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा

और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं।

0: मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले दो से तीन दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का यह नागपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बेला के फूल। महेंद्र कपूर की आवाज में किस्मत फिल्म का ये एसएच बिहारी का लिखा गीत है। संगीत से सवारा है ओपी नैयर ने।

किस्मत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर। लीजिए सुनिए आनंद कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया, MG हशमत का लिखा गीत। आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म है कोरा कागज़।

कोरा कागज फिल्म के लिए किशोर कुमार ने गाया और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सवारा गीत आपने सुना। दोस्तों, बेला के फूल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती के नागपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से

मोहम्मद रफी ने गाया खिलौना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बेला के फूल कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मौसी फिल्म से, जिसे गाया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। भरत व्यास की ये रचना है।

मोहम्मद रफ़ी ने गाया खिलौना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बेला के फूल कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मौसी फिल्म से, जिसे गाया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। भरत व्यास की ये रचना है, संगीत वसंत देसाई का।

मौसी फिल्म के लिए तलत महमूद और लता मंगेशकर ने गाया गीत आपने सुना। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बेला के फूल कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है खजांची फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। राजेंद्र कृष्ण के ये बोल संगीत से सवारे हैं मदन मोहन ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाए राजेंद्र कृष्ण का लिखा यह गीत। संगीत से सवारा था मदन मोहन ने और फिल्म थी खजांची। इसी गीत के साथ बेला के फूल कार्यक्रम संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने किस्मत, कोरा कागज, खिलौना, मौसी और खजांची इस फिल्म से कुछ गीत। FM बैंड 100.6 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र।